212.31 MHz में 1413 KHz और प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। प्रातःकाल के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की यह प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक

0: निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए हमारे केंद्र से प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम अर्चना।

प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते।

ईश्वर के लिए श्रद्धा और भक्ति ही जीवन का परम सत्य है। बिना स्वार्थ के प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है।

श्रोतावाच की अर्चना में हमने अनूप जलोटा, हरिहरण, सुरेश वाडेकर, अभिजीत, रूप कुमार राठौड़ और साथियों के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। आज मुख्य स्वर ए हरिहरण और उत्तरा केलकर के हैं।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहों ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर ए हरिहरण और उत्तरा केलकर के थे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है हकदार।
1: मम्मी ने गौरव को मुंह अंधेरे

0: चोर कर जगा दिया। गौरव जल्दी उठ, पड़ोस के कन्नू, लाली, छुट्टन, राधा, चारू और यती को कह गया, नाश्ता ना करें, कहना मम्मी ने देवी के व्रत रखे हैं, तुम सबको निमंत्रण है 9 बजे आ जाना। गौरव बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठ पाया, आंखें खोली और अलसाया हुआ बोला, मम्मी क्या निमंत्रण पर जाने के लिए भूखा रहना आवश्यक होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चे भूखे हैं या नहीं? मैं भी तो चुपके से खाकर ही निमंत्रण पर खाने जाता हूँ। मम्मी अपने काम की हड़बड़ी में झल्लाते हुए बोली, गौरव तुझसे बहस करने को कौन कह रहा है? व्रत के दिन भूखे बच्चों को ही भोजन कराना चाहिए, देवी इससे प्रसन्न होती है, देवी की कथा में भी लिखा हुआ है। गौरव ने अपनी बाल बुद्धि से फिर तर्क दिया, लेकिन मम्मी कन्नू, लाली, छुट्टन के पापा तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और चारू यती के डैडी डॉक्टर हैं, तो ये बच्चे भूखे कैसे हुए? मम्मी किसी तर्क को सुनने के मूड में नहीं थी, वे पुनः झुलझुलाई, अरे पागल, ये बात विवाद का समय नहीं है, जल्दी जाकर बच्चों को खबर कर दे, यदि बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो सब अनर्थ हो जाएगा, मैं और बच्चे कहां से लाऊंगी। गौरव असमंजस में घर से बाहर निकल आया, वो 12वीं कक्षा का छात्र था, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, पिता भी उसके प्रोफेसर थे, माँ पुराने संस्कारों में पली एक धर्म भीरू महिला थी। गौरव ने अंधविश्वास के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, यही कारण था कि माँ के तर्क उसके गले नहीं उतर रहे थे, फिर भी वो माँ की बात को नहीं काट सका। गौरव जल्दी जल्दी कन्नू, लाली के घर पहुंचा और कॉल बेल का बटन दबाने ही वाला था कि वो ठिटक गया और पल भर में एक आश्चर्यजनक निर्णय ले डाला। वो सीधे अपनी काम वाली बाई के घर पहुंच गया, वो जानता था कि सच्चे भूखे इसी बस्ती में ही रहते हैं, इन भूखों को भोजन कराने में ही सच्चा देवी का पुण्य है। उसने घर से बाहर आवाज लगाई, सरला, मिट्टू, पूनो, तरुण बाबू को घर भेज दे, मम्मी ने बुलाया है। गौरव बच्चों को अपने साथ ही ले आया, घर आकर देखा मम्मी नहा धोकर पूजा कर रही थी, मौसी चौकी में भोजन बना रही थी। पूजा से निवृत्त हो मम्मी ने आवाज लगाई, गौरव बच्चों को ले आ, मम्मी अभी लेकर आया, कहकर गौरव मिट्टू, पूनो, तरुण और बाबू को अंदर ले आया। मम्मी विस्मय से बच्चों को देखती रह गई, वो चिल्लाकर बोली, निकालो इन सबको, तुमने पूजा ही खंडित करवा दी। गौरव नम्र स्वर में बोला, मम्मी मैं भूखों को भोजन करवाने लाया हूँ, आपने ही तो कहा था भूखों को भोजन करवाने से देवी माँ प्रसन्न होती है। मम्मी ये सचमुच भूखे हैं, इनकी दशा बता रही है कि आपके भोजन के ये सच्चे हकदार हैं। मम्मी बुच्ची खड़ी गौरव की बात सुनती रही, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, शायद गौरव की हर बात उसकी समझ में आ रही थी। वो दौड़कर बच्चों के पास गई, उनके हाथ पैर स्वयं धोए, प्यार से धुले चौके में ले जाकर भोजन कराया। गौरव जो दूर खड़ा था मम्मी से दौड़कर चिपट गया।
1: अभी आपने चिंतन में एक कहानी सुनी, हकदार। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है।

लीजिए कार्यक्रम विवरण में हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। उत्तम स्वास्थ्य ये लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा 8:15 पर। इस सभा में आज का विषय है देहदान संबंधी भ्रांतियां और निवारण। हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल। घर आंगन कार्यक्रम प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं के लिए 9:30 पर। इसमें आज स्थल रिकॉर्डिंग पर जानकारी होगी

अनंत भाभी का रिश्ता कैसे बने मधुर और मजबूत, साथ ही देशी व्यंजनों के बारे में जानकारी देंगे और कैरी का अचार देसी तरीके से कैसे बनाएं इस बारे में जानकारी होगी। फिल्म संगीत कार्यक्रम में 7:30 पर आप सुनेंगे गाने सुहाने। इस सभा में 9:10 पर भी आप कुछ फिल्मी गीत सुन सकते हैं। नमस्कार कोटा कार्यक्रम थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे होगा।

सायंकालीन प्रसारण में युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5 बजे। इसमें गीतों भरी कहानी सुनिएगा, कहानीकार होंगे फारूख हुसैन। साथ ही नॉलेज कॉर्नर में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस और हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और संपादक अजीत शंकर चौधरी के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही कुछ फिल्मी गाने और मेरी प्रेरणा, विज्ञान धारा और आज का संवाद, इन नियमित स्तंभों पर आप जानकारियां सुनेंगे। चौपाल कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा एक बातचीत, पशुपालन के क्षेत्र में नए अनुसंधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह। साथ ही पीएम सिंचाई योजना पर चर्चा करेंगे और लोक संगीत सुनवाएंगे। 7:30 पर सायंकालीन सभा में राजस्थानी लोक संगीत होगा और रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 9 बजे भी, और सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज कड़ी संख्या 9 का प्रसारण होगा। ये कार्यक्रम रात 11:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा।

हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, 8:15 पर इस सभा में आज लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा उत्तम स्वास्थ्य। इसमें आज का विषय देहदान संबंधी भ्रांतियां और निवारण। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम नारायण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले एक गाने से शुरुआत।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और इस समय जारी है कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोताओं, आज हम आपको जानकारी देंगे आदिवासियों के महान नायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर। भगवान बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और लोक नायक थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ नागपुर यानी झारखंड में एक सशक्त आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें धरती का आबा यानी धरती के पिता के रूप में भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के उलीहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगान मुंडा और माताजी का नाम कर्मी मुंडा था। उन्होंने आदिवासियों को अंधविश्वास, नशाखोरी और धर्मांतरण से दूर रहने की सीख दी। उन्होंने बिरसाइत पंथ की स्थापना की और एक ही ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। बिरसा ने अंग्रेजों की दिक्कू यानी बाहरी लोगों वाली नीतियों और वन अधिकारों के हनन का विरोध किया था। उन्होंने आदिवासियों को संगठित करके लगान माफी के लिए एक आंदोलन किया और अबुआ राज एतुन जना महारानी राज टुंडू जना यानी हमारा राज स्थापित हो गया है और महारानी का राज समाप्त हो गया है का नारा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्होंने कई बार गिरफ्तार किया। फरवरी 1900 में सोते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में हैजा बीमारी के दौरान मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके संघर्षों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम 1908 पारित करना पड़ा, जिससे आदिवासी भूमि के संरक्षण को सुनिश्चित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।

आइए श्रोताओं, अब आपको कुछ स्थानीय सूचनाएं सुनवा दें। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राज्य सरकार ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ग्रीष्मावकाश 28 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी और निजी विद्यालय अब 29 जून से खुलेंगे। शिविरा पंचांग में संशोधन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 20 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किए थे।

आज कोटा शहर में जिन स्थानों पर बिजली आपूर्ति बंद रहेगी वे इस तरह से हैं: सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बम्भोला महादेव के पास जामा मस्जिद और उमर कॉलोनी और इस्लामिक स्कूल की गली आदि जगहों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। सवेरे 9:15 बजे से 11:15 बजे तक श्रीनाथपुरम बी और श्रीनाथपुरम डी यहां बिजली बंद रहेगी।

अब उन श्रोताओं के लिए जानकारी जो अन्य विदेशी भाषाएं सीखने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कोटा के 3 सरकारी कॉलेजों में मात्र 1,000 रूपए फीस में स्पेनिश, जर्मनी, कोरियन और फ्रेंच भाषाएं सीखने का अवसर है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद के सहयोग से ये 4 माह यानी 16 सप्ताह और 160 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स 15 जून से ऑनलाइन मोड पे शुरू होगा। कक्षाएं कॉलेज परिसर में ही रोजाना 2 घंटे सुबह शाम के 2 बैच सप्ताह में 5 दिन चलेंगी और राजकीय साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रतिमा श्रीवास्तव और कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सियारा मीणा और रीना कुमारी ने एक जानकारी में बताया है कि कॉलेज में पहली बार कोरियन कोर्स शुरू हो रहा है। जेडीबी साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय विक्रम सिंह के अनुसार प्रवेश 12वीं की मेरिट के आधार पर होगा।

अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: आरपीएससी के तत्वावधान में सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 के ऑनलाइन फॉर्म सोमवार से भरने शुरू हो गए हैं। सचिव ने बताया है कि सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थी 7 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आयोग अधिसूचना के साथ परीक्षा स्कीम और सिलेबस भी जारी कर चुका है।
1: परियों को कभी किसी ने देखा तो नहीं, उनकी खूबसूरती शायद ऐसी होगी।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है वाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने सुहाने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। अगला गीत थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे। बहरहाल, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज सवेरे 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम होगा और इसका विषय है देहदान संबंधी भ्रांतियां और निवारण। आप में से जो भी श्रोता इस विषय में जानकारी चाहते हैं वो सीधे फोन करके डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल जी से बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए फोन नंबर है STD कोड 0744 और इसके बाद में 2941142 मिलाएं। कार्यक्रम का समय 8:15 से 9 बजे तक। सूचना समाप्त होती है।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल, गाने सुहाने। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म स्वयंवर में गुलजार ने लिखा ये नगमा, संगीत राजेश रोशन का।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के प्रिय श्रोताओं, आपके दिल की धड़कनों को छूने के लिए एक बार फिर से आ रहा है वही प्रोग्राम जिसका नाम तो याद ही होगा आपको, रात के सुकून भरे पलों में काव्य संगीत और अल्फाज की अदायगी से आपकी धड़कनों को महकाता हुआ कार्यक्रम रात रानी के फूल, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर रात रानी के फूल। अब ये कार्यक्रम सुनिए अपने बदले हुए दिन यानी रविवार को रात 9 बजे

श्रोता लता मंगेशकर को आपने फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में सुना। गाने सुहाने कार्यक्रम की ये हमारी आज की आखिरी पेशकश थी। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज। साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सवेरे के 8 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार होंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि

0: दरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
4: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई।

0: है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: न्यूज ऑन एआईआर .gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, अब आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर देश दुनिया में हर जगह सुन सकते हैं। सवेरे के 8:15 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक प्रायोजित कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
3: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है,
4: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स। सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लैप्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चेदानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
3: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
2: उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में मैं हूं राम नारायण और आज का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वह है देहदान संबंधी भ्रांतियां और निवारण। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल जी, जो इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ आचार्य और विभागाध्यक्ष राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा से। बहुत बहुत स्वागत मैम, आपका नमस्कार।
5: नमस्कार आप सभी को।
2: तो श्रोताओं, डॉक्टर साहिबा की इच्छा है कि

0: ज्यादा से ज्यादा उनसे आज के विषय पर बात करें, क्योंकि देहदान से संबंधित वो बहुत समर्पित हैं और उन्होंने काफी काम किया है काफी सालों से इस विषय पर, इस प्रोग्राम में और अन्य जगहों पर वो लोगों को प्रोत्साहित करती रहती हैं, जागरूकता फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य है। तो ये कार्यक्रम तभी ज्यादा सफल और रोचक होगा जब आज आप इस कार्यक्रम में फोन के माध्यम से जुड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा फोन करें और इस विषय की बारीकियां समझने की कोशिश करें। फोन नंबर मैं आपको बता देता हूं 2941142 2941142। ये एसटीडी कोड इससे पहले मिलाना है आपको कोटा शहर का 0744। तो नंबर आप सभी को याद है। अब आइए इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ये बताइए कि देहदान होता क्या है?
1: जी, देहदान साधारण भाषा में है कि मृत्यु के बाद आपकी देह को दान करना। उसका पर्पज है
0: जी,
1: चिकित्सा क्षेत्र में शोध या शिक्षा के लिए मृत्यु के पश्चात देह को दान करना ही देहदान कहलाता है।
0: अच्छा, तो ये जो देहदान है इसका आप मतलब मेडिकल जो कॉलेज है या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आप लोग हैं, किस तरह से इसका उपयोग करते हैं, क्या काम आता है ये? और मतलब कोई आदमी अगर देहदान करे तो उसको क्या मतलब आत्मसंतुष्टि होगी उसके परिवार को, और मतलब इसको थोड़ा समझना चाहते हैं हम आपके माध्यम से।
1: जी, जैसे ही मृतदेह हमें प्राप्त होती है देहदान के रूप में, उसको संलेपन करके मतलब उसमें केमिकल्स इंजेक्ट करके उसको परिरक्षित किया जाता है, जिससे वो आने वाले समय कई सालों तक संरक्षित रहती है।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: सुरक्षित रहती है, खराब नहीं होती है। तो उसके पश्चात जब मेडिकल छात्र जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने छात्र आते हैं, उनके अध्ययन अध्यापन के काम में लिया जाता है। उसके अलावा बहुत से रिसर्च वर्क उस पर किए जाते हैं। कुछ सर्जन्स भी नई शल्य चिकित्सा को सीखने के लिए भी उस पर अपना हैंड्स ऑन करते हैं। और इसी तरह से ज्यादातर ये मृतदेह जो मृत्यु के पश्चात आपकी मृतदेह मिट्टी में मिलनी है, उस मृतदेह पर एक मृतदेह पर 20 से 25 या उससे भी अधिक छात्र, मेडिकल छात्र, भावी चिकित्सक
0: जी
1: तैयार होते हैं, अध्ययन करके तैयार होते
0: हैं। तो एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आपसे बात करें।
1: जी
0: हेलो।
2: हाँ सर नमस्कार, डॉक्टर जायसवाल से मुलाकात।
1: आवाज नहीं आ रही।
0: हाँ हाँ जी बिल्कुल,
1: आवाज नहीं आ रही।
0: जी हेलो, बोलिए बोलिए।
2: हाँ हाँ सर, मेरा आवाज आ रही है।
0: बिल्कुल आएगी आवाज, आएगी, आपकी आवाज आ रही है।
2: हाँ ना?
0: हाँ बोलिए बोलिए।
2: मेरा प्रश्न था सर, किन किन परिस्थितियों में शरीर अंगदान नहीं हो सकता? कोई बीमारी जैसे है या
0: जी,
2: कोई कोर्ट केस है?
0: किन किन परिस्थितियों में शरीर
2: अंगदान, शरीरदान विषय है ना सर आपका?
1: शरीरदान
2: शरीरदान अंगदान नहीं हो सकता।
1: आप एक बार वापस से पूछिए।
2: हाँ हाँ
1: हेलो।
2: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, रामचंद्र मखीजा काफिर भाई।
0: हाँ एक बार फिर से जगह का नाम बताइए।
2: हाँ बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से सर।
1: जी जी ठीक है।
2: हाँ डॉक्टर जायसवाल से पूछना है, मैं अपना किन किन परिस्थितियों में अंगदान शरीरदान नहीं हो सकता है, जैसे कोई बीमारी है या ऐसा कुछ?
1: जी, जो साधारण बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर एज के साथ जो हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी या थोड़ी बहुत सांस की बीमारी, तो उसमें हमको कोई मतलब देहदान करने में देहदानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जब उनकी शरीर में कोई बहुत हाईली इन्फेक्टिव डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि एचआईवी एड्स, बीच में जो अपना कोरोना आया था तो कोरोना जैसा तो बहुत हाईली इन्फेक्टिव डिजीजेस हो जाती है, हेपेटाइटिस, तो उस उन बीमारियों की परिस्थितियों में हम देहदान नहीं, मतलब देहदानी को भी नहीं करना चाहिए और हम भी नहीं,
0: पर बहुत ज्यादा डिजीज नहीं है ऐसी
1: जी। बाकी
2: ये मालूम कैसे पड़ेगा कि शरीर में एचआईवी है, कभी जांच नहीं कराया और

0: डेथ हो जाती है और दान करना है तो
1: एच आई वी का मरीज
0: जांच होती है?
1: जी जी, एच आई वी का मरीज जो है वो वैसे ही काफी बीमार होता है और उस जैसे ही वो किसी अस्पताल में अपनी बीमारी के लिए जाता है तो उसका पता चल जाता है।
0: जी,
1: जी, जी, और हेपेटाइटिस में भी पीलिया हो गया उसको बहुत ज्यादा
0: या लक्षण देख जाते हैं।
1: हाँ, जैसे कैंसर का मरीज है तो कैंसर में बहुत ज्यादा उसकी कीमो रेडियोथेरेपी होती है तो उसमें भी वो थोड़ी हम लोग मेडिकल कॉलेज अवॉइड करते हैं उस मृतदेह को लेने के लिए।
2: जी जी, बहुत धन्यवाद आपने कार्यक्रम में फोन किया।
0: ओके सर, वन पत्रम।
2: जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि देह दान किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, मेडिकल जो अध्ययन है उस क्षेत्र में, ये आप बता रही थी। जी
1: जी, तो मेडिकल जब मृतदेह प्राप्त होती है मेडिकल कॉलेज को तो उसको संलेपन करके हम परिरक्षित करके और फिर उसको स्टूडेंट्स के पढ़ने में और शोध कार्यों में इस तरह से हम काम में लेते हैं। तो वो मृतदेह हम कई वर्षों तक उसको संलेपित करके और रखते हैं और जब उसपे प्रत्येक स्टूडेंट उस पे संरचना को हाथ से महसूस करके आंखों से देखकर उस तरह से पढ़ता है तो उसको अच्छे से चिकित्सा साइंस जो है उसको समझ में आती है।
2: हेलो,
3: नमस्ते सर।
2: हाँ नमस्ते,
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, नमस्कार
2: जी, पूछें सवाल।
3: जितेंद्र बात कर रहा था।
2: हाँ बोलो ना जितेंद्र जी।
3: मैम से पूछना था सर।
2: हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आपकी बातचीत की स्पीड बढ़ाओ, आप स्लो बहुत हैं, पूछिए।
3: मैम से पूछ रहा था जैसे कोई भी आदमी की डेथ होती है तो उसको जला के वो जो हड्डियां रहती है वो गंदगी में विसर्जन की जाती है।
1: जी जी,
3: तो मैम उससे लोगों की प्राण त्याग मिलती है कि अच्छे से मोक्ष होगी उनकी।
1: जी जी,
3: तो अब दही दान करने में तो वो चीज तो होगी नहीं।
1: जी जितेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो देहदान हमें प्राप्त होती है
2: जी,
1: तो वैसे तो दान जो है दुनिया में सबसे बड़ा महान कार्य माना जाता है और आज ही नहीं प्राचीन समय से इस दान को बहुत ही महत्व दिया जाता है। परंतु अगर कुछ परिजन, देहदानी के परिजन अगर इन सब रस्मों के लिए मृत्यु के पश्चात जो देहदानी होता है उनकी कुछ अंग प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि नेल्स, दांत, हेयर, बाल, तो ये सब हम उनको थोड़ा सा मृतदेह से प्राप्त करके और उनको दे देते हैं जिससे वो अपना रिचुअल कर लेते हैं।
2: जी जितेंद्र जी,
3: हाँ जी,
2: कुछ और पूछना चाह रहे हैं?
3: जी सर, यही पूछना था।
2: अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो इसके जो अध्ययन है देहदान का अध्ययन, ये कितने सालों तक रखी जा सकती है इसके अध्ययन के लिए?
1: सर, अच्छी तरह से संलेपित करके मृतदेह हैं क्योंकि हमको अच्छी अवस्था में मिल जाती है देहदान के पश्चात, तो हम उसको अच्छी तरह से संलेपित करके कई वर्षों तक उसको म्यूजियम में स्पेसिमेन बना के और इस तरह से अध्ययन अध्यापन के काम में लेते हैं कई वर्षों तक।
2: हेलो,
4: नमस्ते।
2: हाँ नमस्ते, स्वागत आपका। जी
4: प्रलाल मरमिट बोल रहा हूँ, ग्राम पाड़ला तहसीलों से।
2: हाँ हाँ
1: प्रलाल जी बोलिए।
2: जी प्रलाल जी, पूछें सवाल।
4: ऐसा है कि मैंने
2: 2017
4: में फाइल नंबर 14 इसमें से दान कर रखा है।
1: कहाँ पर कर रखा है सर आपने?
4: कोटा में
1: बिल्कुल बोलिए।
4: कोटा में कर रखा है।
1: जी जी,
4: मेडिकल कॉलेज में।
1: जी जी,
4: तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा या
1: जी जी जी
4: क्या करना पड़ेगा?
1: जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका
2: जी।
1: पहले तो मैं आपका बहुत साधुवाद प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस महान कार्य के लिए आप आगे आए और आपने अपना रजिस्ट्रेशन हमारे मेडिकल कॉलेज कोटा में जीवित रहते देहदान की जो प्रक्रिया है वो आपने की। तो इसमें सर आपको हमने एक कार्ड बना के दिया था, उस कार्ड को आप अपने घर में डिस्प्ले करके रखिए, अपने परिजन निकटतम जितने भी आपके रिश्तेदार हैं या आपका फ्रेंड सर्कल है सब में आप बता के रखिए कि मैंने मृत्यु के पश्चात अपने

0: देह को मेडिकल कॉलेज में
1: दान
0: करने के लिए प्रतिज्ञा ली हुई है और मेरी इस भावना को वो लोग आप लोग समझें और मृत्यु के पश्चात मेरी मृतदेह को मेडिकल कॉलेज को सौंपने का कृपा करें। तो इसके पश्चात जब मैं आपके आपके जीवित आपके स्वस्थ रहने की बहुत कामना करती हूँ, परंतु जब अगर ऐसी स्टेज आती है कि मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त परिजन ही हमें मेडिकल कॉलेज में
1: सूचित करेंगे।
0: हाँ बिल्कुल सूचित करेंगे, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में करें, चाहे सुपरिटेंड ऑफिस में, चाहे हमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, जहाँ भी इन्फॉर्म करेंगे तो हम उस वक्त हम पता करेंगे कि क्या मतलब कब मृत्यु हुई है, मृत्यु के समय मृतदेह क्या लेने लायक है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मृतदेह नहीं ले पाते हैं, तो क्योंकि कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें मृतदेह नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो फिर उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो हम मृतदेह को प्राप्त कर लेते हैं। उसमें अगर मृत जो दानी है, देहदानी है, उनके परिजन अगर किसी गाड़ी का यानी एम्बुलेंस या कोई परिवहन जो गाड़ी का वो करते हैं तो हम उनके लिए एम्बुलेंस वगैरह भेज देते हैं
1: जी।
0: और इस तरह से
1: अगर मांग करते हैं
0: मृतदेह, हाँ जी मृतदेह हमको प्राप्त हो जाती है।
1: अच्छा प्रहलाद जी मुझे एक बात बताइए। हेलो, हाँ सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ चित्रलाल जी, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस तरह मिली, थोड़ा बताएं।
2: ये अपना बच्चा है डॉक्टर अनिल बर्मेट।
1: अच्छा अनिल जी, हाँ
2: डॉक्टर अनिल बर्मेट है।
1: हाँ हाँ,
2: तो उसे वो उसने मतलब 45 बार ब्लड दे दिया
1: जी
0: जी जी
2: और 200-300 बार अच्छी भी लगा लिए।
0: कहाँ है डॉक्टर अनिल?
2: ये खानपुर ड्यूटी उसकी
1: जी
2: है, वो
0: जी जी
2: उसने पीएचडी कर रखी है, वो टाइम कहा उसका
0: जी जी।
2: तो वो रक्तकोष फाउंडेशन जो संस्था है इंडिया की, उसका राष्ट्रीय संयोजक है वो
0: जी जी जी।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो
2: वो अपना बड़ा बेटा है, उससे उससे मिली प्रेरणा मुझे।
1: अच्छा अच्छा, उनसे प्रेरणा मिली आपको।
0: बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आपके पुत्र भी और आप भी, और आप आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप भी अपने निकट संबंधियों को भी इस तरह की प्रेरणा दें कि वो देहदान के लिए आगे आएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं मृत्यु के पश्चात, ताकि मृतदेह मेडिकल कॉलेज को प्राप्त की जा सके।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रलाल जी, बहुत शुक्रिया। आप समाज के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे और भी लोग प्रेरणा लेंगे कि किस तरह से हमारा शरीर हमारे जाने के बाद में समाज के काम आ सकता है। बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंडर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर M.L. अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अपना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर M.L. अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।
1: श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय है देह दान संबंधी भ्रांतियां और निवारण। हमारी विशेषज्ञ हैं मेडिकल कॉलेज कोटा से वरिष्ठ आचार्य और विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल। आप इस विषय से संबंधित जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं जरूर पूछिए, और कुछ भ्रांतियां भी इससे संबंधित है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारा इस कार्यक्रम के लिए नंबर है 2941142 STD कोड है। इस नंबर से पहले जो आपको मिलाना होगा कोटा शहर का 0744 यानी 0744। हेलो
4: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
4: नमस्ते सर, ये अभी देहदान का कार्यक्रम चल रहा है ना?
1: जी जी जी,
4: तो इसके लिए पूछना है, आप मेरा प्रश्न पहुंचा दीजिए।
1: जी जी जी,
0: आप बोलिए मैडम।
4: जो देहदान करते हैं, जो व्यक्ति अकेला रहता है वो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लेता है
0: जी जी,
4: है ना, लेकिन वो अकेला ही रहता है। यदि वो एक्सपायर हो जाता है और उसकी सूचना आसपास वाले उसे कोई संभालते नहीं है और

0: बाद में किसी पुलिस केस के
1: जी हेलो
0: दान के उसमें
1: आपका आपका ब्रेक हो गया बीच में कुछ शब्द बीच में
0: तो क्या मतलब अगर जो व्यक्ति अकेला रहता है ना तो उसके परिजन तो उसके पास होते नहीं है। अब वो मान लो अपने अब वो एक्सपायर हो जाता है
1: जी
2: जी
0: तो फिर जब उसकी सूचना तो एक दो दिन बाद में किसी को पता चलेगा कि बाहर नजर नहीं आया ये

0: अब वो एक्सपायर हो जाता है,
1: जी
2: जी
0: तो फिर जब उसकी सूचना तो एक दो दिन बाद में किसी को पता चलेगा कि बाहर नजर नहीं आया, ये व्यक्ति तो क्या समाते है, कुछ होगा तो पता चलेगा, तो उसको एक दो दिन बाद, तीन दिन बाद मान लो किसी को पता चलता है, फिर आके वो देखते भी हैं कि इसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जो भी व्यक्ति आते हैं, पुलिस आती है, कुछ ऐसा केस होता है, तो उसमें उसकी देह काम में आती है या नहीं आती है देहदान में, यदि वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है लेकिन अकेला रहने के बाद एक्सपायर हो जाता है।
1: चलिए आपकी बात समझ में आ गई। अब सुनिए, अब डॉक्टर साहिबा कुछ कह रही हैं।
2: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये जो आपने कहा है कि जो अकेला रहता है तो उसके घर में कोई ना कोई या आसपास से किसी ना किसी से तो उनके बोलचाल होती है, बातचीत होती है, आजकल घर में मेड्स भी आती हैं, तो वो भी आपकी ध्यान तो रखती हैं, और कोई भी पास पड़ोस से कोई भी अगर आपके बारे में इन्फॉर्म करता है हाँ, तो हम उस मृतदेह को एक्वायर कर लेते हैं।
1: कुछ बोल रही थी आप।
2: जी
0: चाहे मतलब जो आस पड़ोस है उनसे तो वो बाहर निकलेगा तब बोलेगा, अब मान लीजिए वो अकेला रहता है और उसके पास में कोई मेट्स वगैरह कोई सर्वेंट वगैरह नहीं आते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो सर्वेंट लगाए या वो पसंद नहीं करता है, तो वो और मेन घर में वो अकेला ही है, बाकी तो रिश्तेदार होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो मतलब
2: जी जी जी बहुत अच्छा मैम, मैं बताती हूँ आपको कि इसमें अगर मेडिकल कॉलेज को आपकी मृत्यु की सूचना नहीं मिलेगी तो मृतदेह कैसे एक्वायर करेंगे,
1: है ना,
2: मृत्यु की सूचना तो हमें
0: के द्वारा मिल जाती है
2: जी,
0: लेकिन वो एक दो दिन बाद
2: जी।
1: अच्छा अच्छा, मेरी बात
2: मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो ये देहदान का कार्यक्रम है इसमें हमें अच्छी देह मतलब मृत्यु के करीब 4 से 6 घंटे बाद ही लेनी होती है, तभी वो उसका प्रोसेस जो है वो ढंग से किया जाता है। और बहुत दूसरी परिस्थितियां ये होती हैं कि जिसमें उनके रिश्तेदार जो देहदानी है उनके रिश्तेदार नहीं आ पाए, तो उनकी मृतदेह गर्मी का दिन है तो मृतदेह खराब होने लग जाती है, तो उसको फ्रीजर डी फ्रीजर में बर्फ पे ऐसे रखा जाता है। पर अगर ये सब प्रक्रिया अगर नहीं हुई तो मृतदेह तो गर्मी या बारिश के दिनों में तो 12 घंटे में बिल्कुल खराब हो जाती है, तो उस परिस्थितियों में हम मृतदेह को नहीं प्राप्त कर सकते, उस परिस्थितियों में हाँ मेडिकल कॉलेज को वो काम की हमारे काम की नहीं होती।
1: आप कहाँ से कौन बोल रहे हैं, नाम बता।
0: मैं अभी बताती हूँ, और एक प्रश्न ये है कि जो अच्छी देह भी आप ले सकते हैं ना, जो अच्छी देह होती है वो कलेक्ट कर ली जाती है मृत्यु के बाद में, और उसको आप अपने मेडिकल उसमें काम में लेते हैं उसमें, लेकिन उसके बाद में उस देह का क्या होता है।
2: मैंने आपको जी मैम जी
0: उन अवशेष का आप क्या करते हैं।
2: जी जी मैं आपको बताती हूँ मैम कि इसमें हम मृतदेह को प्राप्त करके उसको अच्छे से संलेपन करके फिर उस पे विच्छेदन करते हैं, विच्छेदन करके शरीर के अंग प्रत्यंग को हम देखते हैं और समझते हैं, फिर उसके पश्चात उसमें कुछ कई सालों तक जब हम उसका विच्छेदन करके संरचनाओं को देख लेते हैं तो उसके पश्चात उसके म्यूजियम स्पेसिमेन बना के हम जार्स में और ऐसे भर के भी रखते हैं।
1: अच्छा।
2: और उसके अलावा भी अगर कुछ उससे भी हमारा कुछ बच गया तो उसका हमारे पास एक बरियल ग्राउंड है मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग का, तो उसमें हम बरियल करके फिर उसे बोन्स हड्डियां प्राप्त कर लेते हैं, तो वो बोन्स भी हमें पढ़ने अध्ययन अध्यापन के काम में आती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम आपने। आप अपना शुभ नाम बताएं।
0: मैं भारती शर्मा।
2: जी जी कहाँ से बोल रही हैं।
0: हाँ जी
1: कोटा, कोटा से ही,
0: कोटा रेत वाली।
2: जी जी
1: अच्छा
2: जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए भारती जी बहुत अच्छा लगा। आप मेरे ख्याल से रेडियो से कभी जुड़ी हुई थी पहले।
0: जी हाँ सर नमस्ते।
1: अच्छा अच्छा, आप वही भारती शर्मा हो, युवाणी वाली भारती शर्मा।
0: जी हाँ सर।
1: तो चलिए बहुत बरसों बाद आपकी आवाज सुनी। अब
0: की बाद में क्या होता है, उस अवशेष का क्या होता है जो किसी काम का नहीं रहता, वो अवशेष क्या रहता है, मेरे दिमाग में था कि शायद या तो वो जानवरों को डाल दिया जाता हो, पर वो भी नहीं हो सकता क्योंकि संक्रमण हो जाता है, तो उस अवशेष का क्या किया जाता है जो किसी काम का नहीं होता।
2: भारती जी, आप मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग में कमरा नंबर 47-48 में आके और आप हमसे डिटेल में बात कर सकती हैं कि आप आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम आपकी सॉर्ट आउट करेंगे।
1: और आप आकाशवाणी में भी एक

0: फिर से पधारे हैं आप
1: जी,
0: है ना
2: जी। थैंक यू सर।
0: आकाशवाणी में काफी दिन हो गए आपको आए हुए, तो जरूर आए, आपका स्वागत है, क्योंकि आप हमारी युवाणी की अच्छी प्रस्तोता और बहुत जिज्ञासु उस समय आप थी, आप है ना
2: जी सर।
0: तो चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, देहदान से जुड़ी हुई भ्रांतियां और उनका निवारण। आप भी इस विषय पर फोन करना चाहें तो जरूर फोन कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं, 2941142, एसटीडी कोड 07144, इससे पहले मिलाएं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। हेलो जी, तो इनका तो फोन कट गया मैम, आने दीजिए, दूसरे कॉलर आएंगे। हमारे काफी आज बहुत ही जागरूक श्रोता हैं जो लगातार हमें जुड़ना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं इस विषय पर, तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हेलो जी, नमस्ते। हाँ मयंक जी, मयंक कुमार शर्मा, यही नाम है ना आपका
4: जी? नरेंद्र कुमार।
0: नरेंद्र, नरेंद्र जी, जी जी नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछे सवाल।
4: और मेरी भी इच्छा है कि मैं देहदान करूं
0: जी,
4: और मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूँ कि जो देहदान करना चाहते हैं उनकी बॉडी सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल पाएगा मेरे लिए?
0: थोड़ा सा आप मूवमेंट करें क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क की क्लैरिटी नहीं है। दरअसल
4: मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो देहदान करना चाह रहा है उसके क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल पाएगी मेडिकल कॉलेज में, ताकि उसकी दर्द सुरक्षित रहे जब तक वो जीवित है?
0: जी मैम बताएं
1: जी। सर, इस तरह का अभी कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं है। मृत्यु के पश्चात जरूर अभी चल रहा है कि कुछ ट्रीटमेंट मिले, अदरवाइज अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। जी जी, धन्यवाद
0: जी। तो अब ये बताइए, देहदान की जो प्रोसीजर है, इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरह से आप लोगों तक सूचना पहुंचती है, और फिर मेडिकल कॉलेज इसमें उसकी क्या भूमिका रहती है देहदान प्राप्त करने में?
1: जी जी जी, इसमें देहदान के लिए आपको सिर्फ दो पृष्ठों का एक बहुत सरल सा फॉर्म भरना होता है
0: जी,
1: जिसमें देहदानी का डिटेल और उसकी सहमति कि मैं देहदान करना, मरने के पश्चात मैं देहदान करना चाहता हूँ, और उसके बाद उनके वारिस या परिजन उनका एक अनापत्ति पत्र उसके साथ लगा होता है, जिसमें उनके सिग्नेचर होते हैं जितने भी उनके परिजन या वारिस जितने भी होते हैं उनके, और यह फॉर्म जिस पर एक फोटो लगाकर हमें मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना विभाग में सबमिट कर दिया जाता है, जहां पर हम उन्हें एक देहदान रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हैं और उस रजिस्ट्रेशन कार्ड को वो ले जाकर अपने घर में कहीं फ्रेम करवा के लगा सकते हैं, ताकि उनके परिजनों को सबको पता रहे कि ये इन्होंने देहदान का पवित्र पुण्य कार्य किया है, और मृत्यु के पश्चात वो मेडिकल कॉलेज को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर सके समय पर, ताकि हमको मृतदेह प्राप्त हो सके।
0: अच्छा, अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में क्या स्थितियां हैं, कितने देहदान हो चुके हैं, इस तरह का कोई रिकॉर्ड हो तो आप हमें बताएं, हमारे साथ साझा करें। जी
1: जी, अभी करीब 600 से ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन देहदान के हो चुके हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, और हमें कल ही हमें एक मृतदेह प्राप्त हुई है जो 69वीं देहदान हमें प्राप्त हुई है। पिछले 8 दिनों में हमें 2 देहदान प्राप्त हो चुके हैं।
0: तो आपको हमारे जो इलाका है यानी हाड़ोती जिसको कहते हैं, इसमें देहदान के प्रति लोगों की जागरूकता के बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी?
1: जी, आज की तारीख में हमारी पब्लिक, हमारी जनता काफी बहुत ज्यादा जागरूक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन। आप क्वेश्चन लेना चाहें?
0: जी जी जी जी,
1: ले लीजिए।
0: चलिए, ये सवाल आ गया है, हालांकि मैं आपको रोकना नहीं चाहता था, फिर भी श्रोता फिर बंद कर देते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो,
5: नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत आपका।
5: अर्जुनदान चरण बोल रहा हूँ, क्रमावास बालोतरा से।
0: हाँ जी चरण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जोधपुर जिले से बोल रहे हैं?
1: बालोतरा
5: जिला।
0: अच्छा, बालोतरा, ये कौन से जिले में है?
5: अरे बालोतरा जिला है, खुद ही है।
0: अच्छा, खुद ही जिला बन गया। अच्छा, चलिए, नए जिले अभी थोड़ी जबान पर याददाश्त में आने में टाइम लगेगा हमारे।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि हम कोटा से इतनी दूर रहते हैं ना, तो वो धीरे धीरे आएगा दिमाग में।
5: हाँ नहीं, सही बात, इतनी दूर से चल के आएगा तो।
1: बताइए, आप बताइए, सवाल बताइए
0: जी।
5: मैं ये कह रहा हूँ, कानूनी प्रावधान कोई ऐसा है कि मैंने देहदान कर दिया मेरी मर्जी से
1: जी,
5: और मेरी मृत्यु के

0: मेरे परिजन कहते हम तो ये नहीं देते।
1: जी जी, ये हमारे साथ बहुत होता है।
2: अच्छा,
1: ये बहुत हाँ अच्छा
0: प्रावधान है क्या
1: जी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो इन्होंने बोला बहुत ज्यादा हमारे साथ होता
2: या है चीज
1: हाँ, इस तरह की कि एक बार हमें फोन भी आ जाता है किसी परिजन का कि सो एंड सो एक्सपायर हो गए हैं और इनकी मृतदेह जो देहदान की हुई है हम देहदान के लिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, आप कितनी देर में लाएंगे? 4 घंटे 5 घंटे? कहते हैं हाँ ठीक है, हम पता करके बताते हैं। फिर थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद फिर फोन आता है कि नहीं उनके एक दूर के रिश्तेदार, कोई चाचा जी कोई भाई साहब आ गए तो उन्होंने मना कर दिया कि देहदान नहीं करेंगे। तो इस तरह की समस्या बहुत आती है। पर अब इसमें मेडिकल कॉलेज कोई पुलिस भेज कर मृतदेह को नहीं प्राप्त करता है। अब परिजन की जो भी इच्छा होती है
2: उसका सम्मान,
1: वो सम्मान किया जाता है।
2: तो ये एक आम परेशानी है जो आती है,
1: बहुत ज्यादा आती है। हमारी बहुत सारी देहदान इस तरह से निकल जाती है।
2: तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी उन परिजनों का और जो लोग इस तरह से उसमें अड़चन डालते हैं उनकी प्रति?
1: परिजनों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो व्रत देह जिन्होंने देहदान किया है उस देहदान की अंतिम इच्छा का तो कम से कम आदर करें, सम्मान करें। उनकी जो अंतिम इच्छा है, कई लोग 10-10 साल 15-15 साल से देहदान का संकल्प लेके बैठे हुए हैं और उनकी देहदान हमें मृत्यु के पश्चात सिर्फ इन्हीं कारणों से नहीं मिलती है कि कोई एक उनके रिश्तेदार आके मना कर देते कि हम देहदान नहीं करेंगे। तो ये एक
2: तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है
1: जी
2: कि हम उस देह को प्राप्त करके और उसे मानव जीवन की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती होंगी आप लोग ज्यादा जानते हैं जो उसके अध्ययन से, उसके अंगों के अध्ययन से आप लोग उस रिसर्च तक और उस रिजल्ट्स तक पहुंचते होंगे। एक तरफ है, एक हमारा मिथ है कि जब तक आप जो है उस देह को आप जलाएंगे नहीं और उसका अंतिम संस्कार करने हमारे जो भी रिचुअल्स हैं उनके अनुसार नहीं करेंगे तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सवाल पहले भी आया था, इस बारे में आपके मैं विचार जानना चाहता हूँ।
1: आज हमारी देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है
2: जी।
1: इस तरह की अंधविश्वासों पर वो विश्वास थोड़ा सा उनका कम हो गया है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि समाज के हित में हम क्या कर सकते हैं। और जो मृतदेह मृत्यु के पश्चात जिसको जलाकर उसकी राख ही प्राप्त करनी होती है, उसमें उसके अगर उसी मृतदेह को आप मेडिकल कॉलेज को सौंपते हैं तो उस पे एक मृतदेह पे कितने भावी डॉक्टर पढ़कर तैयार होते हैं। तो ये एक
2: बड़ा पुण्य का काम।
1: हाँ, ये इस महादान और इस कार्य के लिए लोग समझने लग गए हैं और वो करते हैं। आजकल बहुत जागरूक हो गए।
3: विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर एमएल अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर एमएल अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ है। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
4: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
3: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
4: लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें।
3: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
2: एक बार फिर से हम अपने सभी श्रोताओं का प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और आइए अब कुछ और श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो उनका सवाल मैं डॉक्टर प्रतिमा जी तक पहुँचाता हूँ। हेलो
5: हेलो, नमस्कार। राम राम साहब।
2: हाँ नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी।
5: सब गांव सावन बाद जिला कोटा से राम स्वरूप मालूम बोल रहे।
2: हाँ मालूम साहब, पूछे सवाल।
5: सब सवाल ये कोई एक्सीडेंट बाद कट जाओ या टूट जाओ जो राड़ा रखी हुई है तो भी

0: दे डांकर से कटेगा
1: जी। एक्सीडेंट में अगर किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ बॉडी में नुकसान हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी देहदान हो सकता है?
0: शुगर या बीपी की बीमारी होती है जिसे ये भी कर सकते हैं
1: जी।
2: जी मैंने पहले भी बताया जैसा कि बीपी और शुगर की बीमारी में तो हम मृतदेह को प्राप्त कर लेते हैं देहदान के लिए, परंतु अगर जैसे पहले किसी का पांव टूट गया है, टूटना तो कुछ नहीं है, वो तो रिपेयर हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा उसका।
0: मेरा खुद का टूट रहा है।
2: टूटने का मतलब क्या, आपने उसको मतलब प्लास्टर करवा के ठीक करवा लिया ना?
0: दो रॉड रखी हुई है बीपी, डॉक्टर ने बोला कि जिंदगी भर रहेगी तो
2: क्या रहेगी,
1: दो रोड रखी हुई है।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की मृतदेह हम प्राप्त कर लेते हैं, पर जो रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो जाती है या किसी की सुसाइड से या किसी ने आत्महत्या या किसी की हत्या हो गई है या कहीं सड़ी गली बॉडी में हमको प्राप्त हो रही है या जली हुई बॉडी है या बहुत इन्फेक्टेड मृतदेह होती है, तो उनकी मृतदेह हम नहीं प्राप्त करते हैं। अदरवाइज जब किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी टूट गई है, रॉड डल गई है या ट्रीटमेंट पूरा हो गया है और बॉडी इंटैक्ट है, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं।
0: बॉडी सही है मैम जी?
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने देहदान का फॉर्म भरा हुआ है?
0: भर देंगे फॉर्म तो।
2: जी जी आप भरिए आप बिल्कुल।
0: और जैसे जिसके कैंसर की बीमारी हो, जैसे टीबी की बीमारी हो, वो भी कर सकते हैं क्या जी?
2: हाँ, कैंसर की बीमारी में तो हम लोग, अगर कैंसर की बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा रेडियो और कीमोथेरेपी होती है, तो उसके कारण कुछ नसें सूख जाती हैं, तो उसमें अच्छे से सल्लेपन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम लोग मना करते हैं जो हाँ बिल्कुल रीसेंट कैंसर की अवस्था से आता है, और जिसके पहले हो गया वो सब ठीक चल रहा है तो उसका तो
0: जैसे अभी अटैक आता है लोगों के अचानक, तो वो बॉडी
2: क्या जी,
1: जैसे किसी को अचानक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया?
2: हाँ हाँ बिल्कुल लेते हैं, हार्ट अटैक का ले लेते हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं। हाँ बिल्कुल हार्ट अटैक से ही डेथ होती है ज्यादातर, तो उसको हम प्राप्त कर लेते हैं।
0: लोगों को समझाएंगे आजकल अटैक।
2: जी जी आप भी शरीर रचना विभाग मेडिकल कॉलेज कोटा में आके आप बात करिए और अपना फॉर्म भी भरिए।
1: जी
2: जी
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम ये बताइए कि जो देह दान प्राप्त होते हैं आपको, उनके आधार पर आपके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान से एक और कॉल आ गया है हमारे श्रोता का, तो हम अपने श्रोताओं की कॉल्स को प्राथमिकता में रखते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो
3: नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्कार, बहुत स्वागत आपका।
3: अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी बिल्कुल, बोलो आप अम्बाला कैंट से।
3: इसका ध्यान तो जो हो जाता है इसका, जो आप वो जैसे बाहर कोटा का रहने वाला, उसने कोटा में मेडिकल में नाम दिखा रखा है।
2: जी जी
3: और जगह रहता है, उसकी डेड हो जाती है, तो वो वहाँ भी कर
2: बिल्कुल
3: सकता है।
2: बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है फिर से आपका। जो व्यक्ति जैसे आज किसी ने यहाँ कोटा में रहते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसके पश्चात वो किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, किसी बड़ी सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ आजकल तो देश में हर बड़ी सिटी में मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आप वहीं पे मृतदेह को दान कर सकते हैं। परंतु अगर कोई आसपास के कोटा के शहर में आप रह रहे हैं, जैसे अभी बिल्कुल जो लास्ट देहदान हुई थी
1: जी,
2: तो उसमें जो देहदानी थे वो अपनी एक पुत्री के पास रहते थे कोटा में, और फिर वो दूसरी पुत्री के पास थोड़ा दूर चले गए थे
1: जी,
2: तो उन्होंने वहां से मुझे इन्फॉर्म किया, हमने एम्बुलेंस भेजी और मृतदेह हमें प्राप्त हुई। तो अगर नियर बाई आपका सेम मेडिकल कॉलेज पड़ता है तो हम प्राप्त करते हैं, अदरवाइज आप जिस भी स्टेट में जिस भी बड़े शहर में है तो वहाँ आप मेडिकल कॉलेज को दान कर सकते हैं।
1: जी जी बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बताइए कि हमारे हाड़ौती में ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ सब जगह देहदान प्राप्त करने की व्यवस्था है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज को अगर जैसे ही सरकारी परमिशन मिलती है तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप मृतदेह का, क्योंकि मृतदेह को हर कोई नहीं रख सकता, हर इंस्टीट्यूट नहीं रख सकता,
1: जी, जी, जी, जी,
2: तो उनको मृतदेह को संरक्षित रखने के लिए और उस पर अध्ययन अध्यापन करने के लिए मृतदेह के पार्ट्स को रखने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके तहत वो मेडिकल कॉलेज जो है वो मृतदेह प्राप्त कर।
1: तो मेरा सवाल ये था फोन से पहले कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उन स्टूडेंट्स को जितनी जरूरत है देहदान की, क्या वो मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है, या फिर अगर नहीं है तो क्या कैसे मैनेज करते हैं आप लोग?
2: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है फिर से आपका।
1: जी,
2: क्योंकि मृतदेह जो देहदानी है उससे

0: खातिरें हमें थोड़ा कम प्राप्त होती हैं। हमारे पास आज की तारीख में 250 यूजी स्टूडेंट्स एमबीबीएस छात्र पढ़ते हैं। उसके अलावा 7 छात्र जो है स्नातकोत्तर के मतलब पीजी छात्र भी पर ईयर हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो हमें करीब 25 से ज्यादा देह की जरूरत पड़ती है पर ईयर।
1: पर ईयर हाँ, मिलती कितनी है?
0: तो देहदान से हमें 11-12 तो मिल ही जाती हैं। तो बाकी जो मृतदेह हैं वो हम जो शहर में लावारिश देह हैं उनको पुलिस के द्वारा अच्छा, करके, अच्छा, अच्छा,
1: उनका भी उपयोग करते हैं।
0: हाँ, पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम अक्वायर करके और उससे।
1: हेलो हाँ जी, मिल गया आपका फोन जी प्रोग्राम में।
2: जी भी है योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़।
1: जी योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पूछिए सवाल।
2: मैं ये पूछना चाह रहा था भैया, जैसे ये तो व्यक्तिगत निर्णय होता है अपना, लेकिन शासन भी क्या कोई प्रयास कर रहा है क्या, जिससे लोग जागरूक हो और बहुतायत रूप में इस चीज को लोग
0: जी योगेश जी, जी अच्छा सवाल पूछा है आपने।
1: जी
0: प्रशासन भी मेडिकल कॉलेज के साथ में और एनजीओ के साथ में मिलके और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके पब्लिक को, जनता को, आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हम लोग प्रेस, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, जैसे आज आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैगजीन्स और बहुत सारे होर्डिंग्स, पोस्टर्स और भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, इस तरह से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। सेमिनार्स आयोजन किए जाते हैं, कहीं वो होती है संगोष्ठी वगैरह की जाती है, इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं जनता को जागरूक करने के लिए।
1: जी
2: धन्यवाद
1: आपका, आपने हमें फोन किया इसके लिए प्रोग्राम में। अन्य श्रोता भी अगर फोन करना चाहते हैं तो हमारे पास में अब केवल 3 मिनट का समय है, आप जल्दी से फोन करिए 2941142 एसटीडी कोड 0744 मिलाकर। हेलो हाँ जी, थोड़ा सा सही जगह पर आए जल्दी से चल के, नेटवर्क कम मिल रहा है आपके अभी जहाँ है। पूछें सवाल, समझने की कोशिश करेंगे हम आपके। जी
3: सर जी, सवाल
0: नेटवर्क नहीं आ रहा है।
1: सही जगह पर जाओ, दोबारा फोन करो आप अभी, ठीक है? अन्य श्रोता कोशिश करें। हेलो हाँ जी,
4: अर्जुन जाट।
1: हाँ अर्जुन जी, पूछें सवाल।
4: मैं पूछना चाहता हूँ किसी कोई निशान हॉस्पिटल में जाके फॉर्म भरवाते
1: हैं
4: तो क्या सर फिर भी कोई आके फॉर्म भर सकते हैं सरकार की तरफ से बुलाए?
1: जी जी जी जी, घर पे आके कोई फॉर्म भर सकता है, कोई आदमी देहदान करना चाहे उसकी प्रक्रिया घर पे जाके कोई कर सकता है, ऐसी व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में, पूछना चाहती।
0: आपको अगर मेडिकल कॉलेज में आने में परेशानी है तो आप फोन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसपे हम आपको फॉर्म पे ही फॉर्म जो है वो फोन पे ही दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और कहीं ही हमारे आसपास या हमारे कोई जहाँ हमारी अप्रोच हो सकती है वहाँ आप रहते हैं तो हम हार्ड कॉपी में आपको फॉर्म पहुंचा देंगे और आप उसको भरकर अपने परिजनों के साइन करवाकर और हमको वापस दे सकते हैं ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा लें।
4: तो नंबर क्या है नंबर
0: की? बिल्कुल
1: जी बताइए नंबर।
0: अच्छा, मेडिकल कॉलेज में आके कांटेक्ट।
1: अच्छा, मेडिकल कॉलेज में
0: आपको, हाँ बिल्कुल, मैं आपको
1: कमरा नंबर बता दीजिए।
0: कमरा नंबर 47
1: मेडिकल कॉलेज,
0: या फिर आप सुप्रिटेंड ऑफिस से बात कर सकते हैं।
1: या बूंदी, मेडिकल कॉलेज, ये मेरे ख्याल से बूंदी जिले के रहने वाले हैं जहाँ तक मुझे पता है।
0: बूंदी में तो बूंदी मेडिकल कॉलेज भी है
1: ना?
0: हाँ बिल्कुल,
1: वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल
1: जी जी, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपने। और कुछ और श्रोता अगर जुड़ना चाहते हैं इस दौरान तो जुड़ सकते हैं, कुछ हमारे पास में समय है तो एक दो कॉल्स और ले सकते हैं हम। बहरहाल इस दौरान हम आइए कुछ और आज के विषय की सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी आप देना चाहती हैं इस कार्यक्रम में। हर बार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं लेकिन चलते चलते कि भाई ये जानकारी श्रोताओं को होनी चाहिए, तो बताइए जो हमारे पास में 1 मिनट का समय।
0: जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि देहदान समस्त मानव जाति के लिए एक अनमोल तोहफा है। देहदान एक महादान है जिसमें मृत्यु के पश्चात भी आप किसी के काम आ सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं। तो आप आगे आइए, आप अपने परिजनों को, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताइए कि देहदान करने से किस तरह से

0: एक मृतदेह पे कितने भावी चिकित्सक पढ़कर तैयार होते हैं?
1: हेलो नहीं, डॉक्टर साहब का नंबर तो वो अलग विभाग का नंबर है, वो आप मेडिकल कॉलेज में ही वहीं संपर्क करें। तो चलिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और आपको एक मैसेज भी सुनवाना है।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
3: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
2: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
3: लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। संपर्क करें
2: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 0744242323, मोबाइल नंबर 9928756522।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज का विषय था देह दान से संबंधित भ्रांतियां और निवारण। डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल जो विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ आचार्य हैं मेडिकल कॉलेज कोटा में, इस विषय की डॉक्टर आप आई और बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत धन्यवाद आपका आज के।
3: धन्यवाद आपका और सभी श्रोतागणों का भी।
2: सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छी तरह से आज कॉल किए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के संयोजक थे हिमांशु नामा। और आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अब अपने रेडियो साथी रामनारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में, 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। ये बैठक 13 जून तक चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह

0: का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इससे पहले कल श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इनमें 12 जिले के कुंजेर निवासी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी भी शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन अनिमेश को असाधारण वीरता, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तीसरे चरण में 5,410 लोगों ने नशामुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से ये प्रोजेक्ट चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी जरूरी है। अभियान के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्ती से नशा मुक्त क्षेत्र बनाया गया। इसके अलावा नशीली गतिविधियों की गुप्त सूचना देने के लिए शिकायत पेटियां भी लगाई गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए जल्दी ही एकीकृत ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में इसके लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से निगमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कामकाज में कम खर्चा आएगा। साथ ही मानव संसाधन, वित्त, लेखा और परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं की बिलिंग और शिकायतों का निवारण भी आसान हो जाएगा। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,95,00,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। बिजली मित्र ऐप के जरिए लोग घर बैठे कनेक्शन और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग दिवस पर शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, जेलों, प्रमुख पर्यटन और विश्व विरासत स्थलों पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर को योग संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखा गया है। इस बीच प्रदेश भर में योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। कल हनुमानगढ़ के नर्सिंग महाविद्यालय में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेद विभाग के

0: निदेशक ने विद्यार्थियों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में बताया। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी विभागों को इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन में तकनीक का बढ़ता उपयोग जवाबदेही को मजबूत कर रहा है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में वित्त भवन स्थित कोष और लेखा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने साइबर ट्रेजरी और ई ट्रेजरी की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को SNA स्पर्श पोर्टल पर जल्द जोड़ने और जस्ट इन टाइम भुगतान प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा। और अब मौसम। राज्य में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तेज गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर में भी पारा 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति बन सकती है, साथ ही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का दौर कहीं कहीं जारी रहने के आसार हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कल जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान JDA के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। JDA के इस बड़े अभियान के दौरान सड़क सीमा में आ रहे 125 से अधिक अवैध निर्माणों और 5 धार्मिक ढांचों को हटा दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी से प्रसारित कार्यक्रम। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गाना है फिल्म मेरे हम सफर का। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और आनंद बख्शी का गीत।

नसीब फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की आवाजें फिल्म त्रिशूल में। साहिर की रचना है और खय्याम का संगीत निर्देशन।

लता मंगेशकर को अभी आपने खामोशी फिल्म में सुना। हेमंत कुमार का संगीत था और गुलजार की रचना थी। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 9:30 हो चुके हैं। आइए अब ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनबा वाली संधि बणिया कताई वर्षा को घणो घणो राम राम बणियो थे संधि राजी खुशी तो चो न क्योंकि राजी खुशी और स्वस्थ रवंगा तभी तो आपन खुश रवंगा बणियो बणियो आज आपन मना रहा छा आदिवासी स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम का महानायक बिरसा मुंडा जी को बलिदान दिवस जो हर साल 9 जून का दिन ही मनाया जाऊ छ। भारतीय इतिहास में धरती आबा यानी कि धरती पिता का नाम से पूजा जाबा वाला बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी न छा बल्कि वो आदिवासी चेतना स्वाभिमान जल जंगल जमीन की रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जाऊ छ। बणियों बिरसा मुंडा जी को जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुयो छो। भारत सरकार द्वारा वहां का जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाओ छे। वहां को बचपन चाईबासा का जंगला और खेता में बीतो छो। पढ़ाई

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बढ़ियाँ वापस अपनी बता चिता पर आ जाऊ। अच्छा नणद भाभी को रिश्तों कशा मधुर और मजबूत बना इकले बढ़िया आज आप एक जानकारी ले रहा है जा, जो सुन लिया चाहिए जानकारी।

0: अपना जीवन में अपन अनेकों रिश्ता जीवा छा और संधा रिश्ता अपनी अपनी जगह खास होवे छ। ईमा ननद भाभी को भी एक असो रिश्तो होवे छ जो देखो जाओ तो बहुत ही खास होवे छ और जीवन में अपना घणो महत्वपूर्ण भी रखे छ। पर बण्या कई बार अपन देखा चाह कर छोटी सी नोक झोंक से यो रिश्तो बगड़बा की कगार पर भी आ जाऊ छ, तो यो रिश्तो मजबूत और मधुर बन्यो रे। इले आज मान घनी बणा से बात करी छे, जैसा इमें कुछ भाभिया भी छे, कुछ ननदा भी छे और कुछ एक माँ छे तो कुछ एक सास छे। सबसे वहां का विचार जाना छे तो सुन लिया छे वहां का एक एक कर विचार। राम राम।
1: राम राम।
0: काई नाम छे आपको?
1: मेरा नाम पारुल कंजोलिया है।
0: अच्छा पारुल जी, जैसा आप आज बात कर रहे हैं ननद भाभी का रिश्ता का संबंध में, तो फली तो आप यह बताओ का आप अभार की भूमिका जी रहे जो?
1: मैं अभी ननद की हूँ क्योंकि मेरे ननंद नहीं है। अच्छा, तो मेरे भाभी हैं दो और ससुराल में ननंद नहीं है। अच्छा, रियल अच्छा। वैसे ननंद है।
0: अच्छा हाँ। तो जैसा का आप बार भाभी बीच हो, तो जैसा आप शादी करके आया होगा यहाँ सासरा में, तो खर्च न कर जब जगह बदल जाओ जो और आपनो पियर में तो आप एक अलग ही मतलब आपनो जीवन रह जाए और सासरा में अलग जीवन रह जाए तो घनी परेशानियां आऊ जो, तो फिर आप न ही ऐसो मतलब इंसान बनियो ससुराल में जो आपकी परेशानियां दूर कर सके या आपकी बात समझ सके।
1: संबंध तो बहुत अच्छे होते हैं ससुराल में, बहुत से मिलते हैं पति का सास का, पर ननद का जो मिलता है उससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं क्योंकि वो हमारी बराबर की रहती हैं। उसमें बहुत सारी होती है, खाना बनाने से लेके आपके जो समाज में आने जाने की, साथ में जाना आना सब हम ननद के साथ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ननद भाभी का रिश्ता ज्यादा स्ट्रांग रहता है क्योंकि वो बराबर के भी बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो साथ में आना जाना सारे काम करना ज्यादातर टाइम हम ननद के साथ स्पेंड करते हैं।
0: सही बात है। तो आप ही वैसा लागे छे कि भाई अगर ननद छे तो अपन अगर कोई बात खंगा तो वो भी समझेगी बात ही।
1: जी ये बिल्कुल सच बात है कि जो हमारी सासू माँ होती है वो हमारे एज डिफरेंस में आ जाती है, हस्बैंड होते हैं वो वर्किंग के उसमें लेवल में रहते हैं, तो वो आप उस तरीके से आप अपनी मन की परेशानी नहीं समझा सकते। पर जो हमारी ननद रहती है या हमारी जो भाभी रहती हैं वो दोनों ही हमारी सहेलियां बन सकती हैं क्योंकि वो भी उसी लेवल पे अपने मेंटेन कर रही होती हैं, तो जब हम बातें शेयर करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है एक दूसरे का, क्योंकि लगभग लगभग सभी के साथ छोटी मोटी जो बातें होती है वो एक समान ही रहती है ननंद भाभी के तौर पे।
0: और अपन खुद को आप मन से खुल जाओ ननंद के सामने, आप चर्चा कर एक छोटी बहन का सम्मान से तो आप सुख दुख कहीं अटूटी जानो सब चीजा वहां से आप बांटना चाहते।
1: जी हाँ ननंद आपकी भाईली बन जाती है, मतलब फ्रेंड। मैंने यहाँ पे आके भाईली सीखा, एक्चुअली मैं यूपी की हूँ।
0: अच्छा,
1: तो यहाँ पे मुझे ननद की बहुत ज्यादा कमी लगी क्योंकि उसके साथ हम जब कहीं बाहर से आते हैं तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं रहती है, तो हमें एक बिल्कुल परमानेंट साथी चाहिए जो हमारे साथ मार्केट में जाए, हमें रेसिपी सिखाए क्योंकि खाना पीना सब चेंज हो जाता है, और हम जिसके साथ ज्यादा बातें करते हैं तो हम उससे बोलचाल भी सीखते हैं। तो ननंद मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रिश्ता होता है जो हमें ससुराल में सरवाइव करने के लिए चाहिए रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो बहुत अच्छा मतलब विचार बताया जो कभी कशा मधुर और मजबूत रिश्ते बनल इकले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। राम राम।
0: ननद भाभी का रिश्ता का संबंध में एक और बड़ा समा का विचार जाना तो करना चाहे बात।

0: राम राम।
1: राम राम आपको भी।
0: काय नाम जी आपको?
1: मेरा नाम अंकिता शर्मा है।
0: अंकिता जी, आभार आप जैसा का ननद छो या भाभी छो?
1: मेरे तीन नंदे हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप अभार भाभी की भूमिका में छो?
1: हाँ जी बिल्कुल, भाभी की भूमिका में हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेरे तीन नंदे हैं, तीनों मेरे पास रहती हैं, मतलब कोटा में ही।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेरा उनसे जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा,
1: बहुत ही प्यारा रिश्ता है हमारा।
0: अच्छा अच्छा, बिल्कुल। या तो बहुत अच्छी बात कीजिए आपने को वहां को, और आपको जो संबंध है बहुत मधुर संबंध है। लेकिन जैसा आप शादी करके आया होगा तो आपका नंदा नखी तरह आप ही सपोर्ट करो, क्योंकि कई बार अच्छी हो हर चीज में आपन आप ही सासू मास न कर सका। आपने ये लगे कोई ऐसा सहेली जसो बड़ जसो अपनी मन सासरा में भी जो आपकी भावना के साथ समझ, और अपने साथ सर जब आप छावा तो सहेली बन जाओ, जब आप छावा तो बड़ बन जाओ, तो कौन मदद करी आपकी?
1: बिल्कुल, मेरी तीनों नंदों ने मेरी मदद करी, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी जो बड़ी नंद है वो शादीशुदा थी।
0: अच्छा।
1: जो दूसरे नंबर की थी वो भी शादीशुदा थी।
0: अच्छा।
1: और जो छोटी है उसके साथ मेरा कम समय रहा साथ।
0: अच्छा।
1: में, बट बहुत ही यादगार रहा।
0: अच्छा अच्छा।
1: जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी नंद है, उन्होंने अपनी दो बहनों को जैसे प्यार दिया वैसा ही मुझे प्यार दिया। मेरे साथ बहुत ही सपोर्ट उन्होंने किया, घर की रीति रिवाज समझाने में
0: सही बात
1: मुझे बिल्कुल मदद करी।
0: और उन्होंने घनी दिक्कत आऊंगी,
1: बिल्कुल दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने मतलब मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया।
0: हाँ।
1: अब तीनों की शादियां हो चुकी है, तीनों अपने अपने घर हैं।
0: अच्छा।
1: वो भी मुझे बहुत मानती है, मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ, और छुट्टियों में मैं उनका इंतजार करती हूँ कि कब वो जल्दी से मेरे पास आए और एक हम अच्छा समय अपना बिताएं।
0: ओ सही बात है। और अंकिता जी, जब भी हो चाहे जब अपना वहां से मधुर संबंध रहे या वो आप ही हर चीज में मदद कर सहायता कर, तो आपने भी इच्छा हो चाहे कभी आपने बहन बेटिया नंदा घर न आपने साथ समय बिताओ।
1: जो बड़ी ननंद है वो माँ की तरह प्यार देती है, और जो मेरी जो छोटी नंद है मैं उनको बिल्कुल भाभी माँ की तरह प्यार देती हूँ।
0: वो तो भी वही चल, क्योंकि आप भी जाना चाह कर जब माँ बाप छे जब तक तो छे, पर माँ का बात तो भाई भाभी से ही
1: भाई भाभी ही है।
0: सही बात है, ये तो बहुत बढ़िया आपने का आपका मधुर संबंध है। पर जैसा का अभार तो आपको सब बढ़िया चाल रही है और भगवान बढ़िया ही चाल, पर जैसा कई बार ऐसी बात हो जाओ जो कहा सुनी हो जाओ और भविष्य में से अपना मुसीबत आ जाओ, तो आप अपना रिश्ता एक कैसा संभाला था? मतलब
1: इसमें क्या होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है आपको आमने सामने बात कर लेनी चाहिए।
0: सही बात है,
1: मतलब खुल के बात कर लेनी चाहिए, किसी तीसरे को ना बता के आप उन्हीं से बात करोगे तो आपकी बात जो है वहीं सॉल्व हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं प्रॉब्लम।
0: सही बात,
1: ये रहता
0: सही बात। आपस में बैठ के कर लो ना का अपन बैठे चाहे पहल बढ़ाए अपन फल ही करना।
1: बिल्कुल। और जो ननंद है उनको पूरा रिस्पेक्ट दो।
0: सही बात है,
1: ठीक है, वो है तो सब कुछ है, और वो नहीं है तो घर घर में नहीं खुशियां नहीं है।
0: बिल्कुल अंकिता जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम।
0: राम राम।
2: राम राम।
0: काई नाम छे आपको?
2: शीलू शर्मा।
0: बिल्कुल शीलू जी, आप बार एक ननद छो या भाभी छो?
2: मैं एक ननद हूँ।
0: बिल्कुल, यानी कि आप बार एक ननद की भूमिका में छो।
2: हाँ जी।
0: तो जैसा आपका भाभी कितनी भाभी है जी?
2: मेरे एक ही भाभी है।
0: अच्छा।
2: हम तीन नंदे हैं उसकी।
0: अच्छा अच्छा। तो जब था तीन नंदा चो एक ही भाभी चो, तो फिर आपका जैसा संबंध है वो की तरह का?
2: बहुत ही अच्छे हैं हम।
0: अच्छा,
2: लोग आपस
0: अच्छा।
2: में फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, और काफी जैसे कहीं आना जाना होता है, अभी तो सब हम लोग पियर आए हुए हैं।
0: अच्छा,
2: तो काफी डेली कहीं ना कहीं हमारा जाना होता है, वो हमको भाभी ही लेके जाती है।
0: अच्छा।
2: जहाँ भी घुमाना हो उसको, खिलाना पिलाना हो, आगे से आगे उसकी लिस्ट रेडी रहती है हमको ले जाने के लिए।
0: सही बात है, क्योंकि आप जाना चाहे कभी भाभी रिश्तों ये शुरू रहे का आप सहेली भी मान सका चाह, बेन भी मान सका चाह। बिल्कुल, या तो आप बहुत अच्छी बात कीजिए, क्योंकि कई बार आपन जो ना माँ से भी भलाए अपना मन का बहुत गहरा रिश्ता रहे, पर फिर भी आपने एक भाभी आता है वहाँ की अलग बात रहे।
2: हाँ, बिल्कुल, मम्मी से ज्यादा वो हमारी चीजों को समझती है और आगे से आगे करने की पूरी कोशिश करती है।
0: बिल्कुल, तो आप मतलब आप गर्मी में मायका को मजो ले रहे?
2: फुल मजा चल रहा है अभी तो।
0: अच्छा,
2: और
0: अच्छा।
2: बच्चों को भी बहुत रहता है कि मेरी बेटी खुद बाहर से आने वाली है, पर वो घर से ज्यादा पीहर में रुकी है, क्योंकि मेरा पीहर सामने ही है मेरे।
0: और अच्छी बात है, जैसा कभी आपका सुख दुख या कसी ऐसी बात भी आ जाओ ना, देखो परिवार से कभी आप जो बात घर में न कर सका वो अपन अपनी भाभी से शेयर करना चाहूँ, ताकि आप मन हल्क हो जाओ। तो आपको तो जैसे आप बता रहे को पास के पास ही तो आप चल जाओ जो बोल दो, जो
2: कुछ भी परिस्थिति में वो कुछ भी हेल्प होती है तो झट से वो तैयार रहती है हर परिस्थिति में हमारे।
0: अच्छा अच्छा। जैसा आपको भाभी छोटी चाहे या बड़ी चाहे आपसे?
2: वो छोटी है, पर अच्छा, रहता अच्छा। है ना, एक ही भाई है।

0: हम लोगों का, मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, पर हम लोग फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं।
1: हाँ सही बात है। और देखो छोटी रह तो आप छोटी से लाड प्यार भी दे सका था। हाँ। और वो आप जाना चाहता भाई भाभी को तो मान सम्मान बचा भी कर जो ओदो बड़ो रह जा तो वो तो देवा ही चाह तो मतलब आपको खबाब मतलब चाहे आप पूरा। हाँ। प्यार सम्मान।
0: हाँ, बिल्कुल सम्मान प्यार और दोस्ती सब कुछ है हम लोगों के बीच में। कोई चीज ऐसी नहीं होती जो हम लोगों में शेयर नहीं होती।
1: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। जैसे अब तक तो रिश्ता ठीक चल पर कभी ना कभी जैसा कोई बात कर ले आगे हो जाओ तो आप कले किसा तैयार रहेगा कई खबू जाओगे।
0: तो हम लोग जितना इतने सालों से जो व्यवहार चला आ रहा है बाई चांस ऐसा कुछ होता भी है तो हम जो प्यार है जो दोस्ती है और इतनी सारी चीजें हैं तो छोटी मोटी चीजों को तो आप एक साइड रख भी सकते हो कि ये चीज लेके मन मुटाव मन में मतलब गलत चीज ना रखें कि भाई ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, अपन अपनी बहन के साथ जैसा रहते हैं तो एक भाभी के साथ भी वैसा रह सकते हैं।
1: सही बात, जो छोटी मोटी
0: चलती रहती है उनको तो एक साइड वैसे भी कर सकते हैं।
1: सही बात, अच्छा आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। कभी रिश्ता या झगड़ाई कभी भी ज्यादा तूल न देनी चाहिए। हाँ। तो मधुर व्यवहार तो रिश्तों बढ़ियों रह जाए। इकले बहुत बहुत धन्यवाद शीनू जी और राम राम
0: राम राम। नणद भाभी का रिश्ता में एक माँ की काई भूमिका हो वच इस संबंध में माने एक और बना सा बात करी चे। अब जान ले चा माँ का भी विचार। राम राम
2: राम राम।
0: काई नाम छे आपको?
2: रुक्मणी शर्मा।
0: रुक्मणी जी आप माने या बताओ कि जैसा का नणद भाभी का रिश्ता कशा मधुर बनया रहा और मजबूत बनया रहा इम माँ को एक काई रोल हो चे?
2: बहुत अधिकार रहे चे माँ को। माँ कहता है समझानी पड़े चे, ननदी भी समझानी पड़े चे, भोजाई भी समझानी पड़े चे और जतनो चे ना जो बेटी बहू को रिश्तों पूरा निभानी पड़े चे। बेटी को तो चे जो बेटी तो अपन समझाओ, बेटी तो अपनी है अपना कौन है बेटी तो बेटी का है तो अपन समझाऊंगा जब भी चे और है ना भाई भोजाई चे जिंदगी भर के लिए तो माँ बाप के दिन का चे। माँ बाप का बात तो पियर भाई भोजाई हम सही चे।
1: सही बात चे। और अपन भी जब बहू की भावना समझेगा तो वह भी अपन न समझेगा,
2: अभी अपन न बहू भी अपन न समझेगी, बहू को भी बेटी की तरह रिश्ता निभानी पड़ेगा।
1: सही बात है। जैसा का अब आपका बेटी भी चे बहू भी चे तो जैसा दोनों में ननद भाभी में कभी कोई बात कर ले का सुनियो जाओ तो फिर आप उमक का ही सुझाव देगी?
2: उमक बेटी समझानी पड़ेगा। अच्छा। बेटी बोझ जैसे हमेशा के लिए बोझ जैसे काम चे बोझ बेटी का तय समझा कर बेटी का तय वो करनी पड़ेगा उनको भाई है ना जो का नाम से भाभी से अच्छी तरह से व्यवहार निभा है ना।
1: आप कोई छोटी मोटी बात हो जाओ तो नवाई छोड़ दे कभी कोई बात करे आपस में समझ जाओ बात करके
2: आपस में समझ जाओ भाई दोनी कोई बात कोई ना भाभी चे नचे एक ही रिश्तों चे
1: एक ही रिश्तों चे। और जैसा का मान लो अब बहु भी रह अगर उनकी कोई गलती हो तो आप उसे भी खा सकता
2: भी कर सका चाह गलती होगी तो जरूर करना उसे भी के भाई सही सही बात तो सही शिक्षा तो देनी पड़ेगी बहू को।
1: सही बात। अब माँ को तो बहुत बड़ो भूमिका रह चाहिए।
2: माँ की तो बहुत बड़ी भूमिका
1: क्योंकि माँ आपने जाना चाहे माँ हर रिश्ता जी हुई रह जाए तुम्हारी सब पतो हो जाए। अब जो शाह आप एक ननद भी रहा होगा
2: भाभी भी बनी चू सब रहे।
1: सही बात है। बहुत बढ़िया रुक्मणी जी थाने बहुत बढ़िया विचार मां से साझा करिया इकले बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
2: राम राम।
0: था ननद भाभी का रिश्ता के ऊपर माने एक और बना से विचार जाने छे और माने भी वहाँ की तरफ से वहाँ का विचार बताया छे। राम राम
3: राम राम।
0: काई नाम छे आपको?
3: सिमरन।
0: सिमरन जी था को ब्याह हो यू नो
3: नो
0: यो मतलब आप कुंवारी छो?
3: हाँ।
0: तो एक मतलब तो आप एक ननदी छो?
3: हाँ छोटी ननद छो।
0: छोटी छो?
3: हाँ।
0: मतलब आपका जो भाई छे जो बड़ा छे यानी कि भाभी बड़ी छे?
3: हाँ, हाँ।
0: अच्छा तो जैसा भाभी और आपका तालमेल के साथ मतलब
3: भाभी का और हमारा तालमेल एकदम बढ़िया छे। भाभी मैंने एकदम मतलब छोटी बहन की तरह रखाना छे
0: है ना।
3: हाँ। और मुँह भी माई एकदम बड़ी बहन की तरह माँ की तरह रखाना छे जो भी बात हो दुनिया के बीच में मतलब मुँह घर का सुन खा सकू जो बात हो मारी भाभी से खा सकू जो वो समझ सके जो बात एकदम दोस्त की तरह रह जो वह
0: बहुत बढ़िया। सिमरन जी और फिर जैसा का आप तो जैसा बताया का आप छोटी जब भी आपको भाभी आएगी
3: छोटी चीज अभी भाभी आएगी जी मुँह स्कूल जाऊं या कोचिंग जाऊं तो मुँह आऊ जाता है मारा भाभी वेट कर वगैरह
0: तो फिर आप ही तो खदी जैसा आपका माँ खटी खटी चल जाओ नहरा तो आपकी कमी भी कम खलती होगी ना।
3: हाँ एकदम माँ के साथ रहूँ ना तो कहीं की भी कमी है नहरा मैंने।
0: बहुत बढ़िया का आपका तो रिश्ता बहुत बढ़िया से वहाँ से।
3: हाँ,
0: बढ़िया वो भी आपके साथ बढ़िया ही रहता होगा।
3: हर एक बात बताओ से मैं
0: ना
3: खुद की कहीं भी मतलब दुनिया माँ का कहीं भी परेशानी हो वो और आसना कर सको बरमस खर्च।
0: सही बात है। देखो जीवन में सुख दुख
3: सही
0: चाल है तो बहुत बढ़िया बात है का आप भी वहाँ की सुनो और वो भी आप
3: समझे भी जा एक दूसरा ही समझा भी
0: जैसा कहीं भी

0: ड्यूटी जाओ तर
1: हाँ
0: तो फिर भाभी आपके लारा जाओ छे।
1: हाँ जाओ छे ना।
0: अच्छा और जैसा कोई चीज में जैसा आप परेशानी आएगी तो मदद भी करता होगा
1: करे जो वो समझे भी जो बात ही जो बात में भैया सुना कर सकूँ या मम्मी सुना कर सकूँ भाभी सुना कर सकूँ जो बात ही मारी समझे भी जो वो बात भी मतलब परेशान रहूँ तो मारी मदद भी करे जो
0: मदद भी करे। हाँ। अरे आप भी जैसा मान लो कोई आपका परिवार में कभी खास हुई हो जाती होगी भाभी के लिए तो फिर आप भी समझाता होगा आपका घर वाला नहीं कभी भाभी
1: समझाओ
0: वहाँ से मतलब हिम्मत भी रह जा
1: हिम्मत भी रह जा और कभी कभार हो जाओ जो ननद भाभी के बीच में भी कोई
0: ना सही
1: हाँ हो जाओ जो तो न्यू अति ज्यादा न रह
0: तूल न दा
1: हाँ तूल न रह मैं एक दूसरा समझ जाऊंगा। हाँ बात बात कर दोनों सुलझा ले जा बस
0: जी मैं सही बात हाँ बहुत बढ़िया सुंदर जी थाने बढ़िया जानकारी दी धन्यवाद। राम राम
1: राम।
2: ननद भाभी का रिश्ता का संबंध में माना एक और बड़ा सा बात करी और वहाँ का भी विचार जाने चे तो कर लिया जा वहाँ से बात। राम राम
3: राम राम।
2: काई नाम छे आपको?
3: मधु शर्मा।
2: मधु जी जैसा का आप अभार एक ननद की भूमिका में छो तो आप ही कशो लाग रही छे?
3: बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अच्छा तो आपको ब्याह हो गयो?
3: हाँ मेरी शादी हो गई।
2: अच्छा अभार जैसा का गर्मी की छुट्टियाँ चल रही छे तो आप मायके भी जाता होगा?
3: हाँ जाते है ना अभी मैं मायके में ही हूँ।
2: अरे बहुत बढ़िया तो जैसा मायका में जाओ छो तो आपन जाना चाहिए माँ बाप तो रह वही छे पर आपनो भी मेन जो खर्च ना का मनोरंजन या मन आपकी भव्य लारा ही लागे छे।
3: हाँ,
2: तो आपको वहाँ के साथ कशो संबंध छे और की तरह आप वहाँ के साथ समय बिताऊ छे?
3: मैं मेरी भाभियों के साथ अच्छे से रहती हूँ वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और वैसे भी मैं मेरे मायके में इकलौती ही बेटी हूँ इकलौती ही ननद हूँ तो हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं।
2: अच्छा।
3: मेरे भाई भाभी मम्मी पापा सब मेरे आने का इंतजार करते ही हैं वैसे
2: तो। बढ़िया सही बात है वे बेटियां को तो सब इंतजार कर रही हैं देखो सही
3: और जैसे ही छुट्टियां आती है वो लगातार कि कब आओगे
2: सही बात है
3: तो उनको इंतजार रहता है बच्चों को रहता है बुआ कब आएंगी
2: सही बात है। और देखो आप बढ़िया रहना चाहे तो आपकी भाभी भी बढ़िया रहे और वो उतना ही मन से आपने बुलाऊ छे।
3: हाँ।
2: बिल्कुल या तो बढ़िया बात किया आपने पर जैसा का कई बार अशो हो जाओ कि कोई छोटी मोटी बात ही होगी जैसा सासरा में भी हो जाओ चे।
3: हाँ।
2: तो मायका में भी हो जाओ चाहे वो माँ बाप कला रहा हो या भाभी कला रहा हो तो असा मैं आपका ही करूँ छू मतलब
3: जैसे परिवार में सब साथ रहते हैं तो मायके में ससुराल में सभी रिश्तों में किसी न किसी से कुछ लेकिन हमारा क्या है भाभियों के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है कुछ बात होती भी है तो हम आपस में ही सुलझा लेते हैं
2: सही बात
3: और उसको वहीं खत्म करते हैं बाकी हमारे रिश्ते में उसको लेके कभी कोई मनमुटाव नहीं होता।
2: हाँ सही बात चू बात ही बढ़वा न
3: बढ़ने नहीं
2: देता आमने सामने बैठरी बातचीत कर लो चू।
3: हाँ
2: बहुत बढ़िया मधु जी ऐसा ही रिश्ता होनी चाहिए जो आगे भी जा काफी मददगार हो जाए तो आपने यह बढ़िया जानकारी दी इकले बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
1: राम। ननद भाभी का रिश्ता का संबंध में आज माने एक सासू माँ से भी बात करी तो वहाँ की कितनी अहम भूमिका हो जाए इस रिश्ता में तो जान ला चाहे वहाँ का विचार। राम राम
4: राम राम।
2: काई नाम छे आपको?
4: ममता जैन।
2: ममता जी आप ये बताओ जैसा कर ननद भाभी को रिश्तो वशा तो बढ़िया ही रहे पर आपन जाना चाह हर रिश्ता में खट्टो मीठो सब याद आ रहे तो जैसा कर अब आपके एक बेटी भी होगी।
4: हाँ बेटी भी है बहू भी है।
2: बहू भी है तो जैसा आप एक सास के तौर पर कभी वहाँ में रिश्ता में काई काई जैसा लड़ाई झगड़ा हो जाओ कोई कहा सुनी हो जाओ तो कैसा समझाओगे वहाँ आप?
4: दोनों को समझाएंगे।
2: अच्छा और जैसा का आप भी एक ननद होगा भाभी होगा तो जैसा आपका रिश्ता में भी कभी कभी कई कई हो जाओ या कोई अनबन हो जाओ तो आप रिश्ता ही तरह से मतलब वही सुलझा लगा
4: दोनों बोलेंगे तो एक जना चुप रहेगा।
2: अच्छा
4: तो बात जानकी जी रहेगी।
2: अच्छा सही बात है बहस मत करो
4: बहस मत करो
2: तो आप भी ऐसा ही करता होगा?
4: हम तो ऐसे करते हैं।
2: अच्छा मतलब इसे शांति बनी रहे
4: शांति बनी रहे कभी बोलेंगे नहीं तो एक बोलता रहेगा दोनों बोलेंगे तो लड़ाई होगी।
2: सही बात
4: एक जना चुप रहेगा तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी आगे।
2: सही बात है तो अब आपका रिश्ता बढ़िया है?
4: बहुत बढ़िया है हमारा तो।
2: और आगे भविष्य में हो जाओ तो आप सबसे बढ़िया बात है चुप हो जाओ
4: चुप चुप रहने में अच्छा है।
2: ठीक है ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देवा के लिए। राम राम
4: राम राम।
2: बणियो अबार आपने जानकारी सुनी का की तरह ननद और भाभी को रिश्तों मधुर और मजबूत बन सकज। जब ननद और भाभी की रिश्ता की बात चल रही है तो सुनना चाहिए एक प्यारो सो लोकगीत।

0: मत करो नंदल भाई सा, मैं तो बाबुल को घर छोड़ आया हारे घरा कि थाने छेड़ने में बड़ो मजो है वो जाई सा, मासू छेड़ा छाड़ी मत करो नंदल भाई सा कि थाने छेड़ने में बड़ो मजो है।
1: बड़े आऊं आज एक जानकारी ले रहा चा, और यह जानकारी चा का केरी को अच्छा आपन कशा देसी तरीका से यानी परंपरागत तरीका से डाला जो साल भर खराब भी नो बढ़ जैसा का बार जून को महीनो चाल रो और अब केरी को चार को टेम भी छ बढ़ क्योंकि आपन जाना चा के एक दो बरखा पड़ी फिर मतलब उस केरिया बढ़िया आ जाओ वाम जाड़िया पड़ जाओ और जिस अचार साल भर खराब नो बढ़ अब जैसा का आप ना केरिया ली बढ़ केरिया लेर फली तो वहां कताई धोली अब वो जितनी आपने खर्च ना जितनी आपनी जरूरत हो उतनी केरी जैसा आपने ली तो वहां धोर आपने सुखा दी फिर सुकार बने केरी कट्टा का सहायता से आपने मनचाया वहां का आकार में खजना का टुकड़ा काट लिया फिर वाई भी धोकर बढ़िया कपड़ा में आपन सुखावा मौसम छोको नोव तो आपन वाक ताई फंको चलार भी सुखा सकाचा फिर जब वो बढ़िया सूख जाओ और न भी सूख तो बढ़िया आपन अच्छा करा कि वाम च न कपड़ा से सुखा ला अब जैसा का आपन फिर वाम थोड़ो हल्दी नमक मलार वाई दो तीन दिन तक रख दा जब दो से तीन दिन वाई रखेंगा फिर उसके बाद वाई आपन बीच बीच में लेकिन उमक करछी यानी कि आपनो पलटो आपन चलाता रहा जिससे वो खराब नो हुआ फिर जब दो तीन दिन हो जाओ उसके बाद बढ़िया

आपण हल्दी नमक को पाणी अलग करला और वहां गुट्टा के ताई खाड कर टुकड़ा के ताई फिर छोका से सुखा लेवा। अब जैसा का आपण मसालो तैयार करेंगा। मसाला में जैसा का सूखो साबुत धनियो लेला, सौंफ लेला और मेथी दाणो च, पीली राई च, कलौंजी च, हींग च और जशा नमक मिर्ची, क्योंकि हल्दी नमक तो बणियाओ आपन फली पटकी दियो छु। ये सब आपन लेकर थोड़ो दरदरो साबुन जो रच ना आपनो कूट बाको उमा आपन बढ़िया से यहाँ दरदरो कूट लेवा। फिर उके बाद ये सब मसाला आपन केरिया में पटक देवा और जब केरी में पटक कर हला देवा। फिर थोड़ो सो तेल डाल देवा, ज्यादा न डाला। फिर जशा का साग बननी च या तो चीनी की या कांच की उमा आपन ये भर देवा और वापस दो तीन दिन बाद आपड़ी में सरसों को तेल पटक देवा। जी सब बनियाओ आपनो जो यो अचार छे ना साल भर खराब नो उगो बनियाओ। अब बनियाओ था से खर्च न कर विदा लेबा को टेम भी हो गयो छे, घड़ी न भी इशारो कर दियो छे। फिर मलंगा नई जानकारी के साथ, तब तक था के बना वर्षाई। दो इजाजत, राम राम।

अभी घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज़। साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। सवेरे के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है
1: जी। बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहां से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूं और उनको मेरे विचार पहुंचा सकता हूं और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूं आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, और दूसरा होता है

0: टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप वन जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह डायबिटीज इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप टू डायबिटीज जो है जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफ़ी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप वन, टाइप टू और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडिमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पे असर होता है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण की शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप वन का रोगी बन चुका है?
0: टाइप वन के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
0: श्रोता

0: सॉन्ग को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर. सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल.
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है.

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं? टाइप टू मरीज है ये,
1: जैसे कि मैंने पहले बताया टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स है और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ता है। कई मरीज ऐसे भी आते हैं।

0: होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें जैसे कि मैंने कहा पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शन है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: पेशेंट्स को दूर टेंशन होती
0: है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है, ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे MD के बैचमेट्स है, मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण है, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ है, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहां पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते, अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है उसको टाइप 1 डायबिटीज है तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा

0: टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
0: जी सही बात है, इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा। बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है।
0: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, पर अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खोखो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमी पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ।
1: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ, ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी

0: रूरल एरियाज है वहां पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गांव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूं, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
1: जी।
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए
0: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
1: जी,
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है कंट्रोल में नहीं रहता है तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं, सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में, स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है, ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताइए, पैरों की पत्तलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट, जैसे कि मैंने बताया न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमजोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है और डायबिटीज के जो मरीज है ये काफी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफी बार एम्पुटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है, तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है तो उस पैर की अवस्था

0: व्यवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
1: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
0: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
1: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: कॉमन पब्लिक है इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है, मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए, डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है, नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
1: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
0: यस।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
0: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकेरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम,
1: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थीं और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
2: विचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो

0: जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
1: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
1: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग इस भक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, केदार पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया है और अपने सुरों से सजाया है साधना सरगम ने।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज में मीरा भजन और जयदेव की इस कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइंड ससन, अनजान के बोल हैं और सरदार सिंह का संगीत।

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स एल्बम से, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम, सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन बाई लता मंगेशकर इस एल्बम से, लता मंगेशकर की आवाज में, गीत के बोल मीरा बाई के, हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे एल्बम मनमस्त कबीरा से बैजू मंगेशकर की आवाज में, कबीर के बोल और बैजू मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है और हमने लिया है द बेस्ट ऑफ सजदा सजदा एल्बम से।

और इसी के साथ कार्यक्रम रंग तरंग समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

विविध भारती अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर देश विदेश में हर जगह सुन सकते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे
2: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं
1: जी। सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा
1: यानी
2: हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
1: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी

0: अर्थपूर्ण है। तो अजीत जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने। हाँ,
4: पाए लागू बड़ी बहुरिया।
5: आ गए भैया।
4: हाँ।
5: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
4: हाँ।
3: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब

तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया।

0: कहाँ जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
2: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
2: और हाय
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब
1: हाँ
0: थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया थाना भीमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर

0: उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। अब बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
5: अरे
4: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा।

0: कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैर लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
2: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
0: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
2: अच्छा
0: अच्छा, राम राम
2: राम राम
0: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक कही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। इसको उसकी मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।

0: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब अगले कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होंगे।

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महबूब की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

हम सुन रहे थे अमर ज्योति फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है फिल्म यादें से, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

हम सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में जहां हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए। गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे थे हम संगीतकार वसंत देसाई को। आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों को सुना। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की आज से इंदौर में शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि

0: मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज के सत्रों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार पर चर्चा से टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण में मदद मिलेगी। ये विषय छोटे किसानों के सशक्तिकरण और वैश्विक कृषि व्यापार को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस बीच प्रदेश में भी आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाए गए हैं। साथ ही स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। श्री शर्मा कल डीग पहुंचे थे। उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। दिन के समय सूरज की तपिश और गर्म हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राजधानी जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सीकर, झुंझुनू में पारा 40 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ। कल 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं फलौदी में 44.8, जैसलमेर और बीकानेर में 44, चूरू में 43.5 और बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। आदेश के अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: वाला विषय नहीं है, इन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब वह गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम चलते हैं इस पहले गीत की तरफ।

और ये पहला गीत जो है वो बड़ा सुंदर सा है. आपको पहचानना है कि इसके ये जो गायक कलाकार हैं वो कौन है, और अगर आपके मन में कोई पहेली है तो उस पहेली को हम तक पहुंचाना है, और उस पहेली का उत्तर भी पहुंचाइएगा. हम हमारे श्रोताओं जितने समझदार नहीं हैं, तो हम चाहते हैं आप उत्तर सहित पहुंचाएं और हम अगला गीत आपको पहुंचा दें, सौंप दें.

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जो हमने लिया था फिल्म पहेली से। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और रविंद्र जैन ने ही इसे संगीतबद्ध किया। अब हमने आपसे पूछा था कि इसके जो गायक कलाकार हैं उनका नाम आप हमें सुझा दें, बता दें, तो आपने हमें उन गायक कलाकारों के नाम बताने के साथ साथ बड़ी सुंदर तरीके से बता दिया इस पूरे गीत के बारे में। हमारे श्रोता लिखते हैं, सुरेश वाडकर हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में 1977 के दशक के कुछ सबसे खूबसूरत और यादगार गानों का आनंद लें। ये गाने केवल मधुर हैं और सहेली हो पहेली पूछो जैसे गानों के दौर सुंदर दौर है। और इन्होंने इसी फिल्म के इस फिल्म के नाम के बारे में भी जिक्र किया है कि ये फिल्म है पहेली। और इसके साथ ही हमारे कई सारे और श्रोताओं ने भी ये उत्तर दिया है, उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और इस सुंदर आगाज के साथ में अब हम आज की पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और आज की पहली पहेली है, जो जन्म से भी पहले पहचान लेती है, जो जन्म से पहले भी पहचान लेती है और मृत्यु के बाद भी स्मृति बनकर साथ चलती है, जिसे खोकर लोग बड़े तो हो जाते हैं पर कभी सचमुच बड़े नहीं हो पाते हैं। और इसका

उत्तर हमारे श्रोताओं ने सही दिया और उत्तर दिया माँ। बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है, और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कारिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरफ उदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है, इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह जरूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है। माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहां तक पहुंचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह, इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ का, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी सूरज की जरूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी हैं और कुछ पहेलियां लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया 3 तीतर। चलो बढ़िया बात है। पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो, और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे में छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, शाम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में। हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियां भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, और अगर आपकी कोई पहेली है जो बड़ी सुंदर सी है तो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।

देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियां हमारे बीच में आ रही हैं, और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के पोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था तो हम आपका उत्तर काले रंग की परछाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कल आज और कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित, किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्लेलिस्ट से भी गाने बच जाते हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है, उसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है, दो लड़के लड़ते जाएं, उनका खेल बढ़ते जाए। इसका उत्तर उन्होंने बताया, स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयां। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं, इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत। इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ें तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए, जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।

0: करता जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता। लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गांव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती। उन्होंने लिखा चरण पादुका। कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है? बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्ही सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती। और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियाँ और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो जरूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया।

मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

हाथी मुन्ने का हाथी मुन्ने का हाथी सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया।

चुन चुन करती आई चिड़िया, ये गीत बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्ताराम का संगीत है, और हमने पूछा था कि आवाज किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफी की आवाज है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं, क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत

0: पहली भेजिए कि गुड़िया विच तकते नी परने सड़ गए थे कुआरे अखते नी, शादी की इच्छा रखने वाली ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार सी बातें भी आई है, ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम फिर भी रहता हरदम साथ। और इसका उत्तर उन्होंने दिया है, सोशल मीडिया। जी, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है, भाई इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं, और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं, बताइएगा। तब तक सुनिए ये संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले, पिछली पहेली जो हमने यूं ही बूझी थी उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया है, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है तो मैं पहेली बताती नहीं, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि ज़मीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरे हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे तो रात को सब अपने बिस्तर पे लेटे लेटे पहेलियां बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोश

खुशी और मौन दोनों ही एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है, बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू अब सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन जो बड़ा सताता था, जरूर बताइएगा।

का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन, जो बड़ा सताता था, जरूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले, जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहां आकर हमें सबसे ज्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं। अरे वाह, इतने सारे नाम है भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है। हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहां हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं। उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था। आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आंख खुले और मेरा दिल दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारी श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा, क्या बात है। एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों की स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है। और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर, किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा, काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूं, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज का है, तो हमारी श्रोता लिखती है, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है, जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नजर पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूँ मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। नखून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना मोहम्मद रफी की आवाज का मैं था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ घूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाइए, इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को अपन

देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत। भारत, भारत, यह अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश वहाँ के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। बड़ा मज़ा आया होगा, मुझे ऐसा लगता है।

समय था जब खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थीं। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी ठिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन

उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास घुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है। लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्त आकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

आज पहले जैसे खुश न रहने का कारण ये है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए भी मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगी है। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है।

खुशी हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमसे अलग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम घर, बाहर, समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख

को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, मीठे बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तब हमारे स्वयं के चेहरे पर भी सुकून और खुशी लौट आती है, और जब हम खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है, पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती है। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से प्यार

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माही में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला

0: श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों

0: की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: ಅಕ್ಕಿಯನ ಸಂಗ ಅಕ್ಕಿಯನ ಸಂಗ ಅಕ್ಕಿಯಲ.
1: हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे. आइए सुनते हैं डाक फिल्म से यह गीत. लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत.

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: भोजन में हम जब चले तो।
1: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गन मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

होता है। फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है घराना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज में महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: सगी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार।
2: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, सभी सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार।
1: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
2: जी।
1: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
2: बिल्कुल
1: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं। तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
2: बिल्कुल
1: चर्चा।
2: और मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद, और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत जीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो की है संस्थापक है जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
1: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
2: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
1: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए?
2: बिल्कुल,
1: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
2: गुठलियों के दाम।
1: यानी
2: वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
1: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
2: बिल्कुल। और चंचल जी मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोता है, सखियां हैं, जो भी सखा हैं, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
1: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम,
2: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
1: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम?
2: गीत सुनने से
1: जी।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के।
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष, यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता,
0: हम बात करेंगे ज़ीनिया पर्सी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो ज़ीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और ज़ीनिया एक व्यवसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: ज़ीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़ी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले ज़ीनिया इवेंट्स का, इसे पहले ज़ीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इनवाइट यू, यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाले।

0: लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारी।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी
0: जी,
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहां पे अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना, जल बिन जरूरी उपयोग, बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है
1: जी।
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल, और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है
0: जी,
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए। अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी

0: सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं।
1: बहुत जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों में आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए

0: में कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे, जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं, घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
1: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ
0: चल रहा है,
1: उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
0: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
1: आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा फेंक,
0: पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
1: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
0: और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
1: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस्क कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत जरूरी अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा
1: क्या बात
0: तो इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
1: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं।

0: हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया, इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर होता है, बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए, इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: भाई क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है, मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने, मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: एक पंथ दो काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
1: बिल्कुल, और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा जी। उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज कराई देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए भाई अपने बहाने बनाने के लिए जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बहाने मैं आप तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सके। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए अपनी गलतियां छिपाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए ये बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी न कभी बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है,
1: अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाते है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक जोक प्यार और स्नेह है तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम का हाथ बटा देते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के

0: हम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है. मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है. लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा. और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए. वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया. और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था.
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था.
0: जी.
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं. समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है. और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई. मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था. सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई. शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी. तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया. सच कहूं तो अरे हां मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया. ऐसे बहाने जो में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं. मैं करती हूँ अक्सर. हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं.
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें.
1: बिल्कुल सुनते हैं.

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है, बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: ये जो है ना फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं कि फोन करना भूल गए तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल्कुल
0: ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं, इससे हमें नहीं

0: मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं. बस बहाने की ही बात है. मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ. इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ. इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई. ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया अगर उन्हें सुना होगा प्रोग्राम.
0: हाँ, अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए. तो
0: और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे. जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं. और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी.
1: बहुत बढ़िया बात है. और देख, हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं. आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी. बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी. जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे. यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं.
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है. हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना.
1: बिल्कुल सुनते हैं.

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा, इसलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन

0: सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए, तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे, तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर, तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग, अच्छा अच्छा, तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी, बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है, तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरफ मलयालम बोलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं, तो बोले आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी, बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई, तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए, खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली।
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा वेदी जी, साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ

0: गुरुदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरुदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरुदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरुदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरुदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरुदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर, तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाई, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद ने डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
0: क्या कहने,
1: यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ है, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ।
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोके आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा था। तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो

0: मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडरेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है। और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजयानंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजयानंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप।
0: खोया खोया चांद।

0: गोविंदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया है और इसके पहले हमने बात की गाइड की और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे. कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे.

0: हुए पत्थर खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। तो बोले दो चार बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है।

0: करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी ट्रेडिशनल इमेज उसको तोड़ा उसने, वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था। क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों, तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा। तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया। जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
0: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा, आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
1: बिल्कुल सही है,
0: कमल के लिए भी मिला। कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
1: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उसे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
0: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी।
1: हाँ।
0: सुनील दत्त साहब के साथ में।
1: हाँ जी।
0: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए, फौजियों के साथ में बीच में जाकर के खूब काम किया, उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाती रही ना।
1: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो। और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
0: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
1: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था,

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उषा और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए, जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और उसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं रेगिस्तान में, टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था तो बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग हमें रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से ही डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
0: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
1: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक।

0: रेशमा शीरा से लेकर आज तक, और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है, और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कह लिए तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मार तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक फिर छह तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, इसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा का वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देके ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बैड पर्सन. No, nobody is bad and nobody is good.
0: देव साहब के साथ में और जो आपके नौ, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं. हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और, आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे. एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे वो.
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक
1: हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
0: और एक एनर्जी से भरे हुए लगते
1: हैं बेहिसाब. मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ, क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे. वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे, तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए. फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है, और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है, और फिल्में बनाए जा रहे हैं. तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं, वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है. सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया. हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जूनियर दो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम.
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें. आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं.

हुई हैं। इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

FM 102 103.6 MHz व मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी।
0: दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आज शाम 6 बजे तक, क्योंकि हम आपको सुनाएंगे खूब प्यारे प्यारे गाने, करेंगे खूब प्यारी प्यारी बातें और देंगे खूब अच्छी सी जानकारियाँ।
1: क्योंकि एक मौसम है गर्मियों का, लेकिन हम आ गए हैं आपको सुहानी शाम में लेकर।
0: बिल्कुल।
1: तो गीत भी सुनाएंगे, जानकारियाँ भी देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ शाम 6 बजे तक।

0: दोस्तों, जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती।
1: बिल्कुल, कभी परिवार को खुश करने की कोशिश, कभी दोस्तों को, कभी समाज को, तो कभी सोशल मीडिया पर लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश। लेकिन एक बात समझ लेते हैं कि क्या सच में हम सबको खुश कर सकते हैं?
0: और इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, उम्मीदें अलग हैं और नजरिया भी अलग है। जो बात किसी को एक को पसंद आएगी, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी पसंद आ जाए।
1: और अक्सर हम दूसरों की राय को इतना महत्व देने लगते हैं कि अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी पहचान को पीछे छोड़ देते हैं। हम दूसरों के अप्रूवल ढूंढते ढूंढते खुद से ही दूर हो जाते हैं।
0: और सच कहूँ तो हर किसी को खुश करने की कोशिश बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक प्लेलिस्ट में सबके फेवरेट सॉन्ग ढूंढना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर आप अपने सपनों के पीछे भागोगे तो कुछ लोग कहेंगे कि यार आप तो बहुत एम्बिशियस हो। अगर सेफ खेलोगे

0: तो वही लोग कहेंगे कि रिस्क नहीं लेते तुम।
1: मतलब दोनों तरफ से ही है नुकसान।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और कुछ भी कर लो कमेंट्स तो आने ही हैं, इसीलिए दूसरों की हर राय को अपने दिल पर लेना बंद करना होगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि सब आपकी तारीफ करें। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप खुद पर भरोसा रखें, चाहे पूरी दुनिया आपकी बात से अग्री करे या नहीं करे।
1: बिल्कुल, और ऑनेस्टली जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब आप कंपेयर और वैलिडेशन के बजाय ग्रोथ पर फोकस करते हैं।
0: और लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है खुद के बारे में सोचना।
1: हाँ।
0: अपनी खुशियों के बारे में सोचना और ऐसा काम करना जिससे आपके मन को खुशी मिले, ना कि दूसरों के।
1: अच्छे काम कीजिए और अच्छा सोचिए और खुश रहिए।

तो इसी अच्छे से थॉट के साथ, इसी अच्छे से विचार के साथ आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं अब गीत और संगीत की दुनिया में, और सुनाते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे आपकी सही

0: योग। योग केवल कुछ आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो हमें खुद से जोड़ता है, हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है और जीवन में संतुलन लाने का काम करता है। और चलिए इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं युवा और डांस टीचर सुविधा शर्मा जी से बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में जहां हम बात करते हैं योग की। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जुम्बा, योगा और डांस ट्रेनर सुविधा शर्मा जी। सुविधा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो सुविधा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि योग सिखाते हुए आपको, डांस सिखाते हुए आपको काफी साल हो गए हैं, तो इस दौरान लोगों में आपने क्या बदलाव महसूस किया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि पहले लोग योग को सिर्फ एक व्यायाम की तरह देखते थे, लेकिन अब वे इसी जीवन शैली का हिस्सा बनने लगे हैं। योग को वो एकदम नॉर्मल अपने जीवन शैली में उन्होंने ऐड कर लिया। पहले ज्यादातर लोग तब आते थे जब उन्हें कोई स्वास्थ्य की समस्या होती थी, लेकिन अब कई लोग स्वास्थ्य से को ध्यान में रखते हुए कि हम उससे कुछ सीखेंगे, इसलिए वो लोग उसको ऐड कर रहे हैं अपने जीवन शैली में। अब लोग समझने लगे हैं कि सिर्फ बीमारी का इलाज ही जरूरी नहीं है, बल्कि बीमारी से बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और योग इसमें बहुत मदद करता है।
1: बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल सबसे ज्यादा किस उम्र के लोग योग की तरफ ज्यादा आ रहे हैं?
2: मुझे लगता है कि अब हर उम्र के लोग योग से जुड़ रहे हैं। पहले ये धारणा थी कि योग सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, लेकिन अब स्कूल कॉलेज के छात्र, कामकाजी, युवा गृहणियां और जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक, सभी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। युवाओं को योग में फिटनेस और मानसिक शांति भी मिलने लगी अब, जबकि बुजुर्गों को सक्रिय और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। यही वजह है कि योग आज हर युवा वर्ग के लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: बिल्कुल। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
2: आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है तनाव और अनबैलेंस दिनचर्या। वो अपनी दिनचर्या को रूटीन में नहीं रख पाते, क्योंकि वो बहुत तनावपूर्ण उनकी लाइफ जा रही है। पढ़ाई का दबाव आ गया, करियर चिंता आ गई लगातार, स्किन का इस्तेमाल और भागदौड़ की जो दिनचर्या है उनकी, उसके उससे रिलेटेड जो मानसिक और शारीरिक रूप से वो थक रहे हैं, उनका मेंटली जो वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। युवा पीढ़ी हमारी, कई युवा कहते हैं कि उन्हें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है या वे जल्दी तनाव महसूस करने लगते हैं। योग उन्हें अपने मन को शांत करने और खुद पर ध्यान देने का अवसर देता है। फोकस करने से वो अच्छा फील करते हैं, तंदुरुस्त फील करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और शरीर में एक ऊर्जा, एनर्जी डेवलप होती है, बनी रहती है एक ऊर्जा।
1: बिल्कुल। अब ये तो बात हो गई युवाओं की है, अब आपके हिसाब से बुजुर्गों के लिए योग कितना अलग होता है?
2: बुजुर्गों के लिए योग का उद्देश्य थोड़ा अलग होता है। जहाँ यंगस्टर्स, जो हमारे युवा है, वो फिटनेस और तनाव कम करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य, जो अपने हेल्दी, कि हम हेल्दी रहे रूटीन लाइफ में, उसकी गतिविधियों को बेहतर बनाए रखने के लिए योग करते हैं। तब मेंटली स्ट्रेस नहीं रहता उनके साथ, वो सिर्फ अपने हेल्दी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में जकड़न, संतुलन की समस्या और थकान जैसी चुनौतियां सामने आती हैं उनके, योग इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। आत्मविश्वास भी बढ़ता ही है और लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करता है।
1: अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके मुताबिक योग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है?
2: सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग योग करने के लिए शरीर का बहुत लचीला होना जरूरी है, जबकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि शरीर का बहुत लचीला होना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कठिन आसन नहीं कर सकते तो योग उनके लिए नहीं है।

0: जबकि सच यह है कि योग किसी प्रतियोगिता का नाम नहीं है। योग का उद्देश्य अपने शरीर को समझना और धीरे धीरे बेहतर बनाना है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योग करता है। दूसरी गलतफहमी यह है कि योग के लिए घंटों का समय चाहिए, वो भी नहीं है एक तरह से, जबकि रोज कुछ मिनटों का अभ्यास भी बहुत लाभदायक हो सकता है।
1: बिल्कुल। अब सुविधा जी, आपको योग डांस ये सब सिखाते हुए काफी साल हो गए हैं, तो आपकी क्लास में कोई ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहा है?
0: वैसे तो बहुत से अनुभव रोज देखने को भी मिलते हैं कि हाँ, ऐसे कई अनुभव हमारे रूटीन दिनचर्या में सामने आते हैं, लेकिन एक बात जो हमेशा प्रेरित करती है वह है लोगों में आने वाला सकारात्मक बदलाव। कई बार लोग बहुत तनाव या शारीरिक परेशानी के साथ क्लास में आते तो हैं, कुछ महीनों बाद ही वह लोग ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए और खुश दिखाई देते हैं। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव साइन है। एक वरिष्ठ नागरिक ने मुझसे कहा था कि योग शुरू करने के बाद उन्हें पहले से बेहतर नींद आने लगी है, वे खुद को अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। ऐसे अनुभव यह एहसास कराते हैं कि योग सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता, मेंटली पीस, अच्छी सेहत, हेल्दी को भी बेहतर बनाता है।
1: सुविधा जी, ऐसे कई लोग हैं जो सालों से योग कर रहे हैं जैसे आप, पर ऐसे भी कई लोग हैं जो अब शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर कोई आज से योग शुरू करना चाहे तो आप उसे क्या सलाह देंगी?
0: अगर कोई आज से ही शुरू करना चाहे योग, तो मैं यही कहूंगी कि शुरुआत बहुत आसान तरीके से करे। पहले दिन से ही कठिन आसनों की कोशिश करने की जरूरत है ही नहीं। रोज अगर वो 10 से 15 मिनट का समय निकाले, कुछ सरल अभ्यास करे और अपनी सांसों पर ध्यान दे। सबसे जरूरी बात है नियमता। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे उसके अच्छे परिणाम खुद महसूस करने लगेंगे। योग में जल्दबाजी की जगह निरंतरता अधिक महत्वपूर्ण है।
1: तो सुविधा जी, आज के कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को काफी अच्छी अच्छी बातें बताई, काफी अच्छी अच्छी टिप्स दी, तो आखिर में आप योग दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि योग को सिर्फ एक दिन के लिए ना करें, एक दिन तक सीमित ना ही रखें, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड कर लीजिए, उसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा ही बना लीजिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। योग हर किसी के लिए है। दिन के कुछ मिनट अपने शरीर और मन के लिए निकालिए। छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन के लिए योग को अपनाइए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुविधा जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं को काफी कुछ जानने को, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे योगा और डांस टीचर सुविधा शर्मा जी से बातचीत। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बेहद ही प्यारा सा गीत।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: दोस्तों एफएम 102 103.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मन पसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं आपकी अपनी खुशी।

0: दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में जो ऐसे महानायक हैं जिनकी कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि साहस स्वाभिमान और संघर्ष की मिसाल है।
1: बिल्कुल, जब भी आदिवासी समाज के अधिकारों स्वतंत्रता और जन जागरण की बात होती है तो एक नाम बड़े गर्व से लिया जाता है और वो नाम है बिरसा मुंडा। इन्हें प्यार से धरती आभा यानी धरती के पिता भी कहा जाता है।
0: और दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था।

0: उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी मुंडा था। और दोस्तों, आज के इस दौर में जब युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा ढूंढते हैं,
1: तब बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो बदलाव लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल स्वर्णिम। और 19वीं शताब्दी के अंत में जब आदिवासी समुदाय शोषण और अन्याय का सामना कर रहा था, तब बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने केवल अधिकारों की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि समाज, शिक्षा, जागरूकता और आत्मसम्मान का संदेश भी फैलाया।
1: सोचिए दोस्तों, इतनी कम उम्र में ऐसा नेतृत्व, ऐसा साहस और अपने लोगों के लिए इतना समर्पण, यही कारण है कि आज भी उनका नाम लाखों लोगों के दिलों में सम्मान के साथ लिया जाता है।
0: हाँ, और पता है कि हमारे पूरे देश में उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहे हैं, तब ये केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का अवसर है।
1: बिल्कुल। और ये दिन हमें उनके संघर्ष, त्याग और समाज के प्रति समर्पण को याद करने का अवसर देता है।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: दोस्तों, अब वक्त है अगले सेगमेंट गीतों भरी कहानी का, जिसमें आप सुनिए फारूक हुसैन जी को और कहानी के बीच में आनंद लीजिए गीत का भी।
1: मेरा नाम मोहम्मद फारूक हुसैन है। मुझे कहानी लिखने का बड़ा शौक है और आज आपके लिए कहानी लिखकर लाया हूँ, जिसका टाइटल है झूठी दुनिया। यह इस तरह की रहेगी जैसे कि बच्चे आजकल के माँ बाप की बात नहीं मानते, उनकी बात को ठुकरा देते और वो गलत जगह चले जाते हैं, तो इसी तरह ये कहानी आपको कुछ ऐसा दिखाएगी। चलो मैं कहानी आपको सुनाना शुरू करता हूँ। जब किसी के घर शहनाई बजती, मेरा मन खिल उठता, मन को सुकून मिलता। जब मैं ये सब देखती, पिताजी भी मुझे देखते, पता नहीं मन में क्या सोच बैठते, बस थोड़ा सा मुस्कुराकर चले जाते। एक दिन मैं घर के बर्तन मांज रही थी, तभी आवाज आई, बेटी कुशी, ओ बेटी कुशी। मैं दौड़कर पिताजी के पास गई, मैंने देखा पिताजी के पास एक अंकल बैठे हुए थे। पिताजी ने कहा, बेटी कुशी, ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आई। मैंने सोचा क्यों न तुमसे एक बार पूछ लूं। पिताजी, आप मेरे माँ बाप दोनों हैं, आप कभी मेरा बुरा नहीं कर सकते, जो आप करें सब ठीक है। ये सुनकर पास में बैठे अंकल भी कहने लगे, गोपाल जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना आजकल तो कहाँ ये सब रहता है। पिताजी ने मेरी शादी की बात को आगे बढ़ा दिया, लड़के वालों को मुझे देखने के लिए बोल दिया। मेरा मन झूम उठा और गुनगुनाने लगा, हो घटा छाई रहेगी क्या, मेरे मन को भिगोएगी नहीं क्या, मेरी लगन लग गई जिंदगी जीने की, मैं क्या करूं, मेरे पैर आज जमी पर नहीं, मैं क्या करूं, हो घटा छाई रहेगी क्या, मेरे मन को भिगोएगी नहीं क्या।

मेरे कुकर की जब सीटी बजी तब मुझे बाहर से एक हॉर्न की आवाज आई। मुझे पता चल गया कि एक लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए। पिताजी ने मुझे आकर कहा, बेटी लड़के वाले आई, तुम जरा थोड़ा सा तैयार हो जाना और चाय नाश्ता ले आना। मैं पिताजी को नम आंखों से देखती, पिताजी मुस्कुराते और मेरे सिर पर हाथ फेरते। लड़के वाले बेताब थे लड़की को देखने के लिए, फिर बोल उठे, अरे भाई साहब लड़की को तो बुलाइए जरा। फिर आवाज आई, कुसी बेटा जरा बाहर आना। मैं एक हाथ में चाय की ट्री और दूसरे हाथ में नाश्ते की ट्री, मेरे हाथ अपने आप हल्के हल्के कांप रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे

अंदर अजीब सी लहर थी। मैं खड़ी रही, चाय नाश्ता रखकर फिर पिताजी ने कहा, बैठो कुसी बेटा। मैं बैठ गई, निगाहें नीचे से ऊपर नहीं हुई। शर्म जो थी लड़के वालों के मुंह से एक ही बात निकली, हमें आपकी बेटी पसंद। ये सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए, उनकी खुशी फूले नहीं समा रही थी। लड़की की माँ ने लड़के से पूछा, बेटे हमने सही कहा ना? लड़के ने कहा, माँ आप मुझसे ज्यादा समझती हो, आप कभी मेरे लिए गलत लड़की नहीं चुन सकती, मुझे भी बहुत पसंद। पिताजी ने अकेले में मुझसे पूछा, बेटी तुम खुश हो?

माँ आप मुझसे ज्यादा समझती हो, आप कभी मेरे लिए गलत लड़की नहीं चुन सकती, मुझे भी बहुत पसंद। पिताजी ने अकेले में मुझसे पूछा, बेटी तुम खुश होना ही रिश्ते से। पिताजी मैंने हमेशा आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं मुझे पता है। पिताजी आपने मेरे लिए एक नंबर लड़का चुना है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है, उनकी बात मानता है, उनकी खुशी को अपनी खुशी मानता है, ऐसा मेरे लिए चुना है आपने लड़का। आप मेरे सबसे प्यारे पिताजी। जब मुझे पिताजी विदा कर रहे थे, एक अजीब गम पिताजी की आंखों में मैंने देखा, रोकर भी हंस रहे थे और मुझसे बोल रहे, बेटी जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना मेरी बेटी, तू हमेशा खुश रहे, कोई गम तुझे ना छुए मेरी लाडो, जा खुशी खुशी जा। मैंने पिताजी से एक बात कही, अपना ध्यान रखना, और मैं बहुत रोने लगी। पिताजी ने कहा, जाओ इसको ले जाओ वरना ये रो जाएगी। मैं पिताजी को काफी दूर तक देखती रही जब तक रास्ता बदला नहीं। मेरा स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ ससुराल में, मैंने एक नई दुनिया में कदम रखा। मेरे लिए सब नए थे मगर धीरे धीरे सब अपने बन गए। जिंदगी चलती रही, हमारे घर एक छोटा सा प्यारा सा मेहमान आया, घर पर सब खुश हुए, मिठाइयां बांट रहे थे, फिर मन खुशी से झूम उठा और गाने लगा, मेरे दिल का टुकड़ा तू मेरी लाज रखना तू, ओ मेरे नन्हे से मेहमान खुशियां लाया तू, मेरी आंखों का तारा बन के रहना हमेशा, अपनी माँ को तू खुश रखना हमेशा, मेरे दिल का टुकड़ा तू मेरी लाज रखना तू, ओ मेरे नन्हे से मेहमान खुशियां लाया तू। मेरे बेटे का नाम हमने रखा रोहित, सबकी पसंद का नाम, मेरे घर पर ये नाम बहुत पसंद आया। जब रोहित स्कूल जाने लायक हुआ तो सब ने बहुत प्यार किया, रोहित को गले से लगाया, लेकिन रोहित जब 13 साल का हुआ तो कहने लगा, माँ मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए। मैंने कहा, बेटा अभी तुम और बड़े हो जाओ फिर मैं तुम्हें फोन दिला दूंगी। रोहित ने कहा, बड़ा हो तो गया और कितना बड़ा करोगी, मेरे स्कूल में सबके पास फोन है, एक मेरे पास नहीं। मेरे मना करने के बाद भी रोहित नहीं माना, फोन के लिए रोज मुझसे लड़ने लगा, खाना नहीं खाता, मैं कहती बेटा खाना खा लो, नहीं माँ मुझे फोन चाहिए। मैं सोचती रोहित की उम्र 13 साल की, फोन के चक्कर में कहीं पढ़ाई से भटक न जाए, डर लगता है क्या करूं, मगर रोहित की जिद जीती, मैंने उसे एक नया फोन दिला दिया। जब जाके ठीक से रोहित ने खाना खाया, मगर जब भी रोहित स्कूल से आता बस फोन को पकड़ लेता, हमेशा ठीक से बात नहीं करता, रोहित सारा अपना बचा टाइम मोबाइल में बिता देता, हमसे बात करना बहुत कम कर दिया। फोन अगर हाथ में से लेते तो जोर से चिल्लाता, फोन की जिद करता, मेरा फोन मुझे दे दो। जैसे एक पल के लिए रोहित ने रहना बंद कर दिया फोन के बिना। मैं रोहित को बहुत समझाती, बेटा इतना फोन चलाना ठीक नहीं, तुम्हारी आंखों खराब हो सकती है, मगर क्या करूं। मैं समझा कर थक गई थी, रोहित ने फोन की लत को जिंदगी बना लिया। फोन ने मेरे बेटे को इस कदर पागल कर दिया, उसे कुछ नजर नहीं आता, खाना खाता तो फोन इस्तेमाल करता, हम उससे कुछ बात करते तो ठीक से हमसे बात नहीं करता, बस फोन। जिंदगी में ऐसी लत लगना जो अपनों से दूर कर दे कभी नहीं लगना चाहिए। एक दिन रोहित घर पर रील बना रहा था, तब आवाज लगाई, बेटा इधर आना। रोहित ने यही कहा, माँ मैं रील बना रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। ये सुनकर मैं रोहित पर गुस्सा हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं रोहित से कहने लगी, तू मेरी बात नहीं सुन रहा, क्या हो गया है बोलो, मुझे इस फोन को आज फोड़ देती हूँ। तुम इस फोन की वजह से सबको भूल गए हो। नहीं माँ फोन को मत फोड़ना वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात सुन रह गई, वाह बेटा हमने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया और आज तुम कह रहे हो फोन मत फोड़ना वरना घर छोड़कर चला जाऊंगा। वाह मेरे बेटे तूने आज साबित कर दिया दुनिया में इस फोन से बढ़कर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। जाओ बेटा खूब इस फोन को चलाओ। मैं रोती रोती अपने कमरे में चली गई, मगर एक बार भी रोहित ने मुझसे नहीं कहा माँ चुप हो जाओ, बस ये कहकर चला गया। माँ आप मुझे गलत समझ रही हो, माँ मैं चलता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, मुझे रील बनानी है। मैंने रोहित के पापा से कहा, हमारे बेटे ने फोन की वजह से हमसे दूरी बना ली। रोहित के पापा ने यही कहा, आजकल सिर्फ यही चल रहा।

सब जगह रीले बनाना, एक दूसरे को अपनी वीडियो भेजना, बस यही जमाना रह गया और कुछ नहीं हो सकता। हमें ही पीछे हटना पड़ेगा, वरना आजकल के बच्चे बड़े जिद्दी है, बड़ी जल्दी बुरा मान जाते। मत दिल पर बोझ डालो खुशी। एक दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ रील बनाने के लिए घने जंगल में चला गया, जिसमें सुंदर सा झरना बह रहा था। रोहित ने अपने दोस्तों से कहा, यार इसमें मैं छलांग लगाऊंगा, तुम उसको शूट करना। रोहित वैसा ही किया, ऊपर से छलांग लगाई। जैसे ही रोहित झरने में कूदा, पानी के अंदर एक पत्थर था, उससे पैर टकरा गया और रोहित के पैर पर चोट लग गई। पता चला पैर की हड्डी टूट गई। दोस्तों ने रोहित को घर पर छोड़ दिया। ये देखकर माँ को रोना आ गया, बेटे ये कैसे हुआ? रोहित ने ये कहा, मैं बाइक से गिर गया। बीच में दोस्तों ने कहा, नहीं आंटी, हमारे माँ बाप ने हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। बात यह है आंटी, रोहित ने झरने के ऊपर से छलांग लगाई, पानी के अंदर पत्थर होने के कारण रोहित के पैर में लग गई। ये बात सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने क्या मेरे बेटे को झूठ बोलना सिखाया है? रोहित, तुमने फोन के चक्कर में झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती पता नहीं, इंसान क्या सोचता और क्या हो जाता है। रोहित बेटा, आज के बाद तुम कभी रील नहीं बनाओगे। रोहित ने माँ से कहा, ठीक है माँ। रोहित ने ऊपर के मन से मना कर दिया, अंदर कुछ और था। रोहित का जब पैर सही हो गया, रोहित ने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रोहित के फोन पर एक अचानक फोन आता है, जिसमें कहता है, आपका नाम रोहित है? जी हाँ, मेरा नाम रोहित है। बोलिए, आपको एक सूचना देनी है, आपके लिए एक ऑफर है, आपको 3 लाख का लोन मिल सकता है, बस आपको उसके लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं और कुछ साइन। रोहित ने कहा, ठीक है। रोहित ऑफिस में चला गया और रोहित से डॉक्यूमेंट्स लिए और फाइल में साइन करा लिया, जिसमें लिखा था, मुझे पैसे मिल गए, ये पैसे 1 साल में लौटा दूंगा। रोहित से बोला, अब आप 1 साल में 3.5 लाख लौटाना है। रोहित ने कहा, लौटा दूंगा, पहले पैसे तो मिले। रोहित से बोला गया, क्या बात कर रहे हैं आप, सर आपको पैसे मिल गए। रोहित ने कहा, कब मिले बताओ। रोहित जी, आपने फाइल को ठीक से पढ़ा नहीं, देखिए इसमें लिखा है, मुझे 3 लाख मिल गए, 1 साल में वापस लौटाना है, ब्याज करके पूरे 3.5 लाख, ठीक है। रोहित पसीना पसीना हो गया, चिल्लाने लगा, ये फ्रॉड है, आपने बेईमानी की है, मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगा। रोहित जी, रिपोर्ट कराओ या किसी से कहो, कुछ होने वाला नहीं, अब तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो जेल जाओगे। ये बात माँ को पता चली, बेटा मैंने तुमसे कहा था, इस फोन के चक्कर में मत पड़ो। रोहित कहने लगा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आज के बाद फोन को जितनी जरूरत होगी उतना ही चलाऊंगा, फालतू नहीं। और ये करके रोहित रोने लगा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे फोन के चक्कर में बहुत बुरा काम हो गया, किसी के बहकाव में मैं आ गया। रोहित ने जो किया था गलत काम, फोन के चक्कर में किसी के बहकाव में आकर, इसका जो भुगतान, इसका भुगतान माँ बाप ने भरा। रोहित को बहुत बड़ा इससे झटका लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, फोन को उतना ही चलाओ जितनी जरूरत हो, दिन भर फालतू फोन मत चलाओ, अपने घर वालों को दूर मत करो फोन की वजह से। जैसे रोहित ने अपने माँ बाप के पास फोन की दुनिया से लौटा है, वैसे आप भी लौट आओ मेरे दोस्तों।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अब दोस्तों कार्यक्रम में आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर जो है विज्ञान धारा। दोस्तों जब किसी देश की सुरक्षा की बात होती है तो केवल उसकी सीमाएं ही नहीं बल्कि उसका आसमान भी सुरक्षित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी रक्षा व्यवस्था में शामिल किया है।
1: बिल्कुल, S-400 एक आधुनिक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल को पहचानने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती है।
0: अब ये सवाल आता है कि स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है?
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो दोस्तों आपको बता दें कि S-400 स्क्वाड्रन दरअसल इस रक्षा प्रणाली की एक पूर्ण परिचालन इकाई होती है जिसमें रडार, कमांड सेंटर, लॉन्चर वाहन और मिसाइल शामिल होती है। ये सभी मिलाकर देश के एक बड़े क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
1: और स्वर्णिम एक और सवाल आता है कि क्या ये प्रणाली दूर से आने वाली खतरों को भी पहचान सकती है? तो हम ये भी बता दें कि इसकी शक्तिशाली रडार प्रणाली संभावित हवाई खतरों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसकी रडार प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है। यही कारण है कि ये इसे दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है।
0: यानी ये केवल एक मिसाइल प्रणाली नहीं बल्कि देश की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक दौर में तकनीक ही सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और S-400 स्क्वाड्रन उसी तकनीकी शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, अब चलते हमारे सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर। आज हम परिचय करवा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे रचनाकार जिन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आलोचना और संपादन हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रसिद्ध कवि, लेखक और संपादक अजीत शंकर चौधरी जी की।
1: दोस्तों, अजीत शंकर चौधरी जी का जन्म 9 जून 1933 को लखनऊ में हुआ। वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील विचारक, शिक्षक, अनुवादक और संपादक भी थे। साहित्य के प्रति उनका समर्पण जीवन भर बना रहा।
0: बिल्कुल दोस्तों, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं जीवन के सामान्य अनुभवों को असाधारण गहराई के साथ प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने मनुष्य के संघर्ष, संवेदनाओं और बदलते समाज को अपनी रचनाओं का विशेष बनाया। उनकी भाषा सरल होने के साथ साथ विचारोत्तेजक भी थी।
1: और स्वर्णिम, उन्होंने कहानी, उपन्यास, संस्मरण और आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में अकेले कंठ की पुकार, अंकित होने दो और घों हो और ऊसर कृतियां शामिल है।
0: बिल्कुल, उनका साहित्य दोस्तों में सिखाता है कि शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज और मनुष्य को समझने का एक सशक्त साधन भी है।

0: स्वर्णिम, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई पुरानी फोटो मिल गई हो और उसे देखते ही यादों की पूरी फिल्म चल पड़ी हो?
1: बिल्कुल, मेरे पास तो ऐसी बहुत सी फोटोज हैं, जैसे स्कूल की, मेरे बचपन की ना, हर फोटो के साथ ढेर सारी यादें। ऐसा लगता है जैसे समय अचानक पीछे लौट गया।
0: और दोस्तों, अगर एक छोटी सी फोटो हमें इतना कुछ याद दिला सकती है तो सोचिए उन दस्तावेजों, पन्नों और तस्वीरों और रिकॉर्ड्स का कितना महत्व होगा जो देश और समाज की यादों को संजो कर रखते हैं।
1: और इन्हीं अनमोल यादों और ऐतिहासिक धरोहरों को सम्मान देने के लिए हर साल 9 जून यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है।
0: और दोस्तों, अभिलेख सुनते ही अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत गंभीर विषय होगा, लेकिन सच कहें तो ये हमारी जिंदगी से काफी जुड़ा हुआ है। आपकी मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली की पुरानी फोटो, ये सब भी तो हमारे लिए एक अभिलेख ही है।
1: बिल्कुल, और जब बात किसी देश की हो तो अभिलेख उसकी कलेक्टिव मेमोरी यानी सामूहिक स्मृति बन जाते हैं। ये बताते हैं कि हमने कौन से संघर्ष देखे, कौन सी सफलताएं हासिल की और समय के साथ किस तरह हम आगे बढ़े।
0: और अभिलेखों को मुख्य रूप से पत्थर की चट्टानों, गुफाओं की दीवारों और विशाल स्तंभों पर उकेरा जाता था।
1: इसके अलावा तांबे और लोहे जैसे धातुओं की प्लेट्स यानी कि ताम्र पत्र और ताड़ के पत्ते या लकड़ी के टुकड़े का उपयोग भी अभिलेख लिखने के लिए किया जाता था।
0: और आज हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं, महान नेताओं के विचारों को जानते हैं, तो ये सब भी तो अभिलेखों की वजह से ही है, क्योंकि जो उस समय के इतिहासकारों ने लिखे हैं, किताबों को भी तो हम अभिलेख कह सकते हैं ना स्वर्णिम।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उनमें भी अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं।
1: यानी खुशी, अगर अभिलेख ना हो तो इतिहास की बहुत सी कहानियां शायद हमेशा के लिए खो जाती।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और इसलिए आज के डिजिटल युग में अभिलेखों को नई तकनीक के साथ सुरक्षित किया जा रहा है।
0: हाँ, और पुराने दस्तावेजों को स्कैन किए जा रहे हैं, तस्वीरों को डिजिटल रूप दिया जा रहा है, इतिहास आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा रहा है।

0: दोस्तों, अब हमारे स्टूडियो की घड़ियां हमें इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा लेने का समय हो चला है। तो अपने दोनों रेडियो दोस्तों को दीजिए इजाजत। मैं आपकी अपनी खुशी
1: और मैं स्वर्णिम,
0: नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए

0: खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.6 MHz पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी कोटा के इस खूबसूरत शाम के कार्यक्रम फिल्म संगीत में मैं हूं आपकी रेडियो साथी नेहा आपके साथ। श्रोताओं, कभी कभी कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं, और ऐसा ही एक गीत हम अब आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म दिल्ली हाइट से। दिल्ली हाइट से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रब्बी शेरगिल की आवाज में, संगीत और शब्द रचना रबी शेरगिल की।

संगीत की शाम को और रंगीन करते हुए अब आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान की मधोश आवाज में फिल्म धूम 3 से ये गीत, कोसर मुनील के बोल और सरगम प्रीतम की।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं जान लेते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार कोटा में बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 7 बजे से 7:30 तक आप सुनेंगे हमारे अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर आरएस गोगावत के साथ भेंटवार्ता योगाभ्यास के लाभ। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट की है राजेश महावर ने, तो अवश्य सुनिएगा प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम नमस्कार कोटा। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। दुनिया की भागदौड़ को पीछे छोड़कर आइए फिर से खो जाते हैं दिलकश नगमों के एहसास में। सुनते हैं दो लफ्जों की कहानी से कनिका कपूर और अर्जुन हरजाई की खूबसूरत गायकी।

आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में आज का हमारा आखिरी नगमा। दिल को छू लेने वाले अपने खूबसूरत अंदाज के साथ सुनिए अरिजीत सिंह को फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से।

0: और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे श्रोता सुनेंगे जयपुर से प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
2: वो भला क्यों?
1: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
2: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
1: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे और लल्लू के बापू, मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
3: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम

केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है। धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबी जीराम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी के सुचारू परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये प्रस्ताव रखा है। ये अधिनियम 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के बजट आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों के

0: मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीआई नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर के खोनागोरियान क्षेत्र में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। हादसे के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के बाद वहां रखे गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया, जिससे स्थिति अधिक भयावह हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
2: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया, और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने एसएमएस और जेएनयू अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने कि कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
1: राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भरे गए सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए। द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 3 प्रत्याशियों ने ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, जिनकी विधानसभा में जांच की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी और भाजपा की अलका सिंह तथा सतीश पूनिया के पर्चों की जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में की गई। जांच के साथ ही इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। यहां 19 विश्वविद्यालय थे, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राज्यपाल आज लोकभवन में कर्नाटक के आईआईटी धारवाड़ के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान के महापुरुषों और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताया। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि इसमें युवाओं को सभी क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जोधपुर मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए बीकानेर भेजी गई है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने आज जयपुर में बैठक कर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री खींसर ने कहा कि बीकानेर का ये मामला कोटा प्रसूता प्रकरण जैसा नहीं है।
3: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। 2 पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके 3 पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर।
1: गौरतलब है कि बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की सूचना है। वहीं गंभीर हालत वाली एक महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने कारणों की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में आज वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 800 से अधिक बुजुर्गों को ये उपकरण दिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए पिछले साल नवम्बर महीने में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद उनकी जरूरत के आधार पर 85 लाख रुपए मूल्य के ये उपकरण तैयार कराए गए।

0: देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने आज जयपुर में एक कार्यशाला में ये जानकारी दी। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये कार्यशाला रखी गई। श्री कुमार ने बताया कि इस अवधि में वस्तु और सेवा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में 9% से अधिक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में भी भारी उछाल देखने को मिला है। श्री कुमार ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से उपजी नई संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
1: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त

0: के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
1: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट पैलेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016-17 में जेम में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या लगभग 2300 थी, जो अब बढ़कर 12 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि जेम पर महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या भी बढ़कर अब 2,16,000 से अधिक हो गई है। साथ ही महिला उद्यमियों की ओर से की जा रही खरीद का आंकड़ा 93,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई फाइलों के निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए उन्होंने फाइल निस्तारण प्रक्रिया को और बेहतर तथा उत्तरदायी बनाने की बात कही। मुख्य सचिव आज विभिन्न समितियों के सचिवों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देशभर में कई आयोजन हुए। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती है। साथ ही विस्तारित अभियान के तहत 18 और 27 तारीख को ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष ट्रैकिंग और निगरानी की जाती है। इस मौके पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ लिया। शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबीजी राम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा विभाग को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बीच जिले भर में जगह जगह योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में नियमित योगाभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का काम जारी है। मौसम की परवाह किए बिना प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चारभुजा तहसील क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे रूपनगर गांव में सर्वे दल 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा। इस दौरान 7 घंटे में 60 मकानों का सूचीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपील के बाद से जिले में ईंधन बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने ईंधन बचाने के लिए एक ही बस में सवार होकर दफ्तर तक का सफर तय किया। चारभुजा में आयोजित संध्या चौपाल में भी दोनों अधिकारी बस से ही गए। लोगों ने प्रशासन की इस पहल को सराहा है और प्रेरणा ली है। न्यायिक अधिकारियों ने भी पैदल चलने,

0: साइकिल का उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की है। कांकरोली पुलिस थाना इंचार्ज सरोज बैरवा ने साइकिल पर शहर में गश्त की और ईंधन बचाने का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में बरसात का पानी इकट्ठा करने और पानी बचाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गयी। बनास नदी और गणगौर घाट पर राजसमंद नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा सरकारी विभागों, गौशालाओं और जल संरचनाओं की साफ सफाई की गई। जल पूजन और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ा गया। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ये अभियान विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। अभियान के तहत मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे और जिले में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए गए। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजसमंद में रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन रखी गई। जिला कलेक्टर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पौधे लगाए गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में विशेष सतर्कता देखी गई। जागरूकता अभियान चलाकर राजसमंद पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। जिला पुलिस ने एक विशेष आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को कहा है कि बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पीने के पानी, स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रहीं। उन्होंने सांगठ कला गांव में 67 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर में अधिक मास की शुरुआत के साथ ही विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में रोजाना भगवान का विशेष श्रृंगार और मनोरथ हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को खास झांकियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। फूल मंडली, जल विहार, रथ यात्रा और नौका विहार के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद उल अजहा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजसमंद जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी रामजी रातेत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रोजाइजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइयां री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। और देशों दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर हूँ बधर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मनरेगा योजनाओं विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी माए बदलाव सारू केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राजवाड़ा प्रदेशों बाबत 95,692 करोड़ रुपया रा अंतरिम बजट रो प्रस्ताव किन्नो है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली माए राज्य और केंद्र राजवाड़ा प्रदेशों रा ग्रामीण विकास मंत्रियों सागे वर्चुअल मीटिंग माए ओ ऐलान किनो। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री चौहान कहो किनी राज्य रा बजट आवंटन माए कोई कमी नहीं करी ची है, बल्कि लारला साल री तुलना माए बजट 40% बधाई चियो है।

0: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: वीबी जी राम जी कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रा मुख्यालय रो दौरो कर 21 जून ने उजुली जावन वाली नीट यूजी प्रवेश परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे कहो कि परीक्षा साफ कोई सागे करावन और इनरी गोपनीयता बनाई रखन सारू सगला जरूरी जतन कर्या जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि इन दौरान आवन वाली अड़चना रो सामो करण सारू खुफिया तंत्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत सगला साइबर सुरक्षा संसाधन काम लिया जा रहा है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए लाए लाग जावनु 3 मजूरा री मौत वेगी और 5 मजूर घना दाज गया। जख्मी मजूरा ने जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रिहायशी हलका माए गैर कानूनी तौर चल रहा ई कारखाना माए हादसारी बगत महिलावा और बच्चा समेत 8 जना मौजूद हा। लाई लाग्या पछे बैठे राखी जी गैस री टंकी फाटगी। हादसा री जानकारी मिलता ही सिविल डिफेंस री टीम मौके पुगी और दमकल री मदद आग बुझाई जी। थाना अधिकारी ओम प्रकाश बतायो कि लाई लागण रा कारण री जांच करी जा रही है।
3: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
1: प्रदेश राज्यसभा 3 सीटा में थे चुनाव सारू उम्मीदवार कानून दाखिल करी जिया सगला 9 नाम पाना आज विधानसभा में करी जी जांच में सही मिलिया। द्विवार्षिक चुनाव सारू राज्यों 3 उम्मीदवार पर्चा दाखिल की नाहा। आम आए 2 भाजपा रा और 1 कांग्रेस रो उम्मीदवार है। चुनाव अहलकार भारत भूषण शर्मा बतायो कि 3 उम्मीदवार कांग्रेस रा नीरज डांगी और भाजपा रा डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पुनिया रा पर्चा री जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन री मौजूदगी माय कराई ची। जांच रा काम रो वीडियो ही बनाई चियो। नाम पाछा लेवन री काल आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि जूना जमाना उई भारत भणाई लिखाई रो केंद्र रहो है। वे आज लोकभवन माए कर्नाटक माए धारवाड़ रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रा विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान बोल रहा हा। एक भारत श्रेष्ठ भारत रा तेत विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान राज्यपाल राजस्थान रा महापुरुषा और ऐतिहासिक स्मारका रो जिक्र कीनो। नवी शिक्षा नीति रो जिक्रो करता थका श्री बागड़े कहो कि इन माए नौजवाना ने हर हलका माए अगाड़ी बनावण माथे जोर दियो चियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर और डीग जिला रा आला अहलकारा सागे मीटिंग कर वठे विकास रा कामा रे बारा माए चर्चा कीनी और जरूरी हुक्म दीना। मुख्यमंत्री डीग जिला रा श्रीनाथ जी मिंदर माए जातरुआ सागे बातचीत कीनी और सुबिता ने बारा माए जानकारी लीनी। इन दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत मौजूद हा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। बीकानेर रा PBM सफाखाना माए ऑपरेशन नु भिया जापा पाछे 6 लुगाईयां री तबियत खराब है जावन रा मामला माए चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल रपट मांगी है। इस आगे जूतपुर मेडिकल कॉलेज

0: ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਰੂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਭੇਜੀ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਉਂਸਰ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਮਾਏ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਸਾਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਨੀ ਅਰ ਅੜਾ ਵਾਕਿਆ ਰੋਕਣ ਸਾਰੂ ਸਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਤਨ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕਹਿਓ। ਖਬਰ ਨਵੀਸਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤਾ ਥਕਾਂ ਖਿਉਂਸਰ ਕਹਿਓ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੋ ਉਹ ਮਾਮਲੋ ਕੋਟਾ ਮਾਏ ਲਾਡਲਾ ਦਿਨਾ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰੀਖੋ ਨੀ ਹੈ।
1: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। दो पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके तीन पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर।
0: ध्यान जोग है कि बीकानेर माए ऑपरेशन नुफिया जापा पछे छह लुगाइया री किडनी माथे असर पड़वारी जानकारी मिली है, जबकि घनी मंदी एक लुगाई ने वेंटिलेटर माथे रखी ची है। चित्तौड़गढ़ माए राष्ट्रीय वयोश्री योजना रा तहत आज बुजुर्गों ने जिंदगी आसान बनावण माए मददगार साजो सामान दिया चिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत 832 बुजुर्गों ने ए उपकरण दीना। वे बतायो कई सारू लारला साल नवंबर महीना माए खास शिविर लगार पात्र लोगा ने पिछाण करी जी, चिंपा छे वानी जरूरत रे मुताबिक 85 लाख रुपया मोल रा उपकरण तैयार कराई चिया। भारत रा सामान री दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर बधर 863 अरब डॉलर ताई पूग की है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय रा वाणिज्य विभाग माए संयुक्त सचिव साकेत कुमार आज जयपुर माए आ जानकारी दीनी। केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए राखी जी एक कार्यशाला माए श्री कुमार कहो कि इ मियाद माए सेवा हलकाओं जुड़ी बिक्री माए 9% बत्ती बढ़ोतरी दर्ज करी जी। श्री कुमार न्यारा न्यारा दिशा सागे करी जिया मुक्त व्यापार करार उपजी नवी संभावनावां रा बारा माए जानकारी दीनी। वे कहो कि इनू भारत उन दिशावर माए सेवा और माल बेचण वाला ने बेहतर मौका मिल रहा है।
2: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम रे जरिए खरीद बिक्री करण वाला सूक्ष्म लघु उद्यमारी तादाद साल 2016-17 रा करीब 2300 बधर अब 12 लाख वेकी है। जेमरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार आज नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे कहो कि जैम माथे महिलाओं रा मालिकाना हक वाला उद्यमारी तादाद ए बधर अब 2,16,000 ने पार कर की है और महिला उद्यमियां कान्यू खरीदी 93,000 करोड़ रुपया लेवल न पार कर की है। अरब मौसम प्रदेश माए तेज गर्मी और उमस रो असर बतक्यो है। आज श्रीगंगानगर बीकानेर और जैसलमेर समेत कई ठोणा पारो 44 डिग्री सेल्सियस न पार कर क्यो। बाड़मेर चूरू कोटा जोधपुर और जयपुर माए जोरदार गर्मी रही। इन बीच मौसम विभाग आज प्रदेश रा 7 जिला माए अंधड़ बरसात और 5 जिला माए लू बजन सारू चेतायो है। 11 जून नु राज्यरा कई हलका माए ओजू आंधी बारिश वेवन रा आसार है। अहमदाबाद माए राखी जी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप माए राजस्थान पुलिस री सिपाही देवांशी शर्मा सीनियर बी हैंड बैलेंस होड़ री व्यक्तिगत श्रेणी माए सोना रो तमगो हासिल कीनो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाने आ उपलब्धि हासिल करण सारू बधाई और शुभकामनावां दीनी। राज्यपाल मारा बधाई संदेश माए ई होड़ ने भारत री संस्कृति जुड़िया योग खेला ने दुनिया री स्वीकृति बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मथ 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर।

0: सुन ले रहा हो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी रामजीरा तेज किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव माए कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून ने उजुली जावन वाले नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइयां री तबीयत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। हर देश हूँ दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर उम्बद हर 863 अरब डॉलर ताई पोगी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 102.6 MHz व मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुन बाला संदाय किसान बन भया कहता है रेणुका बना कैडी सु घनो घनो राम राम। और जी बन भयाओं का हाल चाल छे? हाँ पाची उमस असी और जे तावड़ो से पड़ रहे छे, गर्मी तो तगड़ी पड़ रही थे जोरदार। अरे छे ने जो वो कचन अपना गाड़ो ती में कहावत छे के रूणी ने गलनी चाहिए जे, रूणी को नक्षत्र जब चाले छे ना तो पानी पड़ गयो तो फिर पूनी उपड़वा गाड़ धन बहत्तर टाल। अरे आपने आ तो रूणी भी गड़ गई देखो, पण वो पानी पड़ो छाटक छिटा हुआ तो उधन थोड़ी सी ठंडाई ची और फिर पाची ऐसी उमस गर्मी होगी इम 9-10 बजे के बाद इगर से बारह करता है सो लागा जगह बारह सक गया तावड़ा में। और जेट च बन भाया हो तो चक्कर चे ना असाड़ को तावड़ो और कालो पड़ गयो दामड़ो तो जेट असाड़ को तो जोड़ो ही ऐसी हुई जी, मैं तो कदी तो बादलों का डूमड़ा हो चे, कदी जोरदार तावड़ो पड़े चे, कदी बीचा में ठंडा बायरा भाग जाओ चे, कदी फिर चौकी जकर भाग जाओ चे। तो मौसम में बदलाव तो चाल तो रहे चे, पर आपने खेती बाड़ी का काम न रुक, अपने खेती बाड़ी का काम भी करना चे, अपने स्वास्थ्य भी देखना चे, अपना घर का बड़ा बूढ़ा बालकाए भी देखना चे, अपना अणबोलिया साथिया भी देखना चे, जानवरानी भी, तो यहाँ सब में अपने कहते हैं संतुलन बना चालनो चे। और साथ ही साथ देखो आज अपन एक दिवस मना रहे हैं बिरसा मुंडा शहादत दिवस। मन भयाओ आज अपन बात करा या अशा महान जननायक को ज्या को नाम छ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में स्वर्ण अक्षर में दर्ज छ। अपन बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी की, ज्या की स्मृति में आज शहादत दिवस मनायो जा रो। बिरसा मुंडा को जन्म 15 नवंबर 1875 में हुए चो। वह आदिवासी समाज का अधिकार सम्मान और स्वाभिमान के लेकर संघर्ष कर वाला महान योद्धा चा, वहां के ताई भगवान बिरसा मुंडा भी खो जाओ चे। उस समय अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के कारण आदिवासी समुदाय अनेक कठिनाइयों को सामना कर रहे चो। बिरसा मुंडा ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगों के ताई संगठित करियो। वहां आदिवासी समाज में जागरूकता फैलावा के साथ साथ सामाजिक सुधार को भी काम करियो। वहां को मान बोचो को शिक्षा एकता और आत्मविश्वास का बल पर समाज के तय आगे बढ़ाया जा सके। बिरसा मुंडा का नेतृत्व में चालो आंदोलन उलगुनान अर्थात महान क्रांति का नाम से जानो जाओ छो। यह आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों और शोषण कार्य व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करवो छो। अंग्रेजी शासन वहां की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित होया छा और वहां के तय गिरफ्तार कर लियो और 9 जून 1900 कदन रांची की जेल में वहां को निधन हो गयो। तो वहां की याद में ही आज आप दिन मना रहे चा और ऐसा महान जो समाज सेवक जो लोक नायक वहां के ताई सशत प्रणाम चा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन

0: मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और बहन भाई आप बात कर रहे थे प्रकृति पल पल रंग बदल रही च और ई प्रकृति के ऊपर आपने खेती बाड़ी आधारित रह च वह जब साइंस गणना जाओ जब जा रहा आपने सता हो च लेकिन खेती बाड़ी में हो या नुकसान से बचवा के लिए घना सारा साथ में और भी अच्छा रोजगार च अच्छा काम जो आप कर सका चा और वहां समझिए एक मछली पालन बन भयाओ मछली पालन आज ग्रामीण क्षेत्र में आय बढ़ावा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन गयो। कम लागत और अधिक लाभ और रोजगार को सरोबा का कारण की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सरकारी मछली पालन के तय प्रोत्साहित करवा के लेकर अनेक सुविधा प्रदान कर रही है। मछली पालन के लेकर सबसे पहले तालाब निर्माण जीर्णोद्धार और जल प्रबंधन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाओ च कई योजनाओं के तहत किसानों के तालाब निर्माण और सुधार के लेकर अनुदान भी दियो जाओ बन भया किसान बन भया एक अलावा गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज यानी कि फिंगरलिंग उपलब्ध करावा की व्यवस्था च इस उत्पादन में वृद्धि हो च मछली पालकों के तय संतुलित आहार दवाइयां और तकनीकी सलाह की सुविधा प्रदान की जाओ च सरकार और मत्स्य विभाग समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर च और आधुनिक मछली पालन तकनीक रोग प्रबंधन और विपणन की जानकारी दी जाओ च साथ ही बैंक ऋण और विभिन्न योजना का माध्यम से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाओ च यदि आप मछली पालन शुरू करवो चाहो चो बन भया तो आप ना जिला का मत्स्य विभाग या कृषि विभाग केंद्र से संपर्क कर सको चो जहाँ आपके ताय मत्स्य पालन के लेकर योजना अनुदान और प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी मिल सके चे। तो आपने बताए खेती बाड़ी के साथ साथ ये रोजगार का धंधा भी अपनानी पड़ेगा ताकि आपने बताए नुकसान न हो। और अब आपन और भी भेंट वार्ता लेकर का आया चाहे अपना किसान बन भया के लेकर तो आओ लिया यह जानकारी किसान बहन भाई हो टेम टेम पे चौपाल कार्यक्रम में आपके ताई अलग अलग विषय पर जानकारी दिलाता रहा चा हर अलग अलग विषय पर विषय विशेषज्ञ के ताई बुलाता रहा चा। आज इस क्रम में आपने साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी पशुपालन विशेषज्ञ और प्रसार शिक्षा निदेशक कृषि विश्वविद्यालय कोटा जो आपको जानकारी देगा पशुपालन का क्षेत्र में कई कई नया अनुसंधान हो रहा है इस विषय पर। तो डॉक्टर साहब आपको घणो घणो स्वागत मा कार्यक्रम चौपाल में और सबसे पहले आपको कहडी से घणो घणो राम राम
3: राम राम सर।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे की आपको आज को विशेष पशुपालन का क्षेत्र में कई कई नया अनुसंधान हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी की पशुपालन का क्षेत्र में हाल का वर्षा में कसा कसा महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहा है जो अपना किसान बन भया के लेकर उपयोगी हो सके।
3: देखिये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान भाई रहती है महिलाएं रहती है क्योंकि जो डेयरी है या पशुपालन का कार्य है वो ज्यादातर हमारी महिला जो बहने हैं उनके द्वारा किया जाता है
2: जी।
3: जो पशुपालन में जो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे जो किसान भाई महसूस करते हैं वो कि देसी गायें हैं उनका उत्पादन कम है
2: जी।
3: जैसे हमारे यहाँ नस्लें तो बहुत अच्छी पाई जाती हैं जैसे गीर है थारपारकर है साहीवाल है परंतु इनका जो औसत दूध उत्पादन जो हमारे किसान भाई ले पा रहे हैं वो 4 से 5 किलो प्रतिदिन ले पा रहे हैं
2: जी।
3: जबकि इन नस्लों की दूध उत्पादन क्षमता 15 से 20 लीटर प्रतिदिन भी है
2: जी।
3: और इसका जो भी हमारे किसान भाई हैं वो देख सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा पर गीर नस्ल की गायों की एक डेयरी इकाई लगी हुई है वहाँ की गायें 15 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं
2: जी।
3: तो जो जहाँ तक अनुसंधान की बात है तो हमारे किसान भाई या तो अच्छी नस्ल का सांड रखें या सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है तो वहाँ कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं
2: जी।
3: और उसमें जो नई बात जो है वो ये है कि हमारे किसान भाई कहते हैं कि साहब बछड़ी है तो ठीक है पर बछड़े का उपयोग जबकि आजकल जो ट्रैक्टर वगैरह आ गए या मैकेनाइजेशन हो गया तो उपयोग कम हो गया है तो आज सोर्टेड सीमन भी उपलब्ध है जिससे बछड़ी ही पैदा होगी। तो ये किसान भाइयों के लिए एक विशेष मेरा निवेदन है कि वो पशुपालन विभाग या जो हमारे पशु चिकित्सालय है उसे संपर्क करके जब भी उनकी गाय गर्मी में आए तो सोर्टेड सीमन का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे तो पूरी संभावना है कि उनकी गाय बछड़ी ही पैदा करेगी। तो इस अनुसंधान का वो नया काम ले
2: कृत्रिम गर्भाधान को पशुपालन का क्षेत्र में काय महत्व है डॉक्टर साहब।
3: देखिए हमारे पास देशी नस्ल के पशुधन बहुत हैं भैंस भी बहुत हैं परंतु उसमें बहुत अच्छे पशुओं की संख्या बहुत कम है
2: जी।
3: ज्यादातर पशु है ऐसे जिनका उत्पादन क्षमता कम है तो हमारे जितने भी चाहे गाय हो चाहे हमारी भैंस है हमारा सबसे पहला काम है कि उसकी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाए मतलब ज्यादा दूध पैदा करें।
2: बिल्कुल।
3: तो ज्यादा दूध पैदा करने के लिए हमें जो आने वाली संतान है वो ऐसी पैदा करनी होगी जो कि ज्यादा दूध दे सके। अब उसके लिए हम लोग बड़े स्तर पे इतने सांड चाहे वो गाय के हो भैंस को पालना बहुत मुश्किल है और नहीं उपलब्ध है। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था सरकार द्वारा सभी जगह की गई है और कृत्रिम गर्भाधान में भी जो नई मैंने आपको बताया अभी कि जो देसी गाय

0: हैं, जैसे विशेष तौर से गिर नस्ल की गायें, उसका सॉर्टेड सीमन हमारे पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है, उसका उपयोग करेंगे तो बछड़ी ही होगी। तो कृत्रिम गर्भाधान के प्रति हमारे किसान भाइयों को थोड़ा जागृत होना होगा।
1: तो डॉक्टर साहब, आप मैं यह बताओ कि नई तकनीक जो वह अपना पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादन में की तरह से लाभदायी साबित हो रही है।
0: जैसे कि आपने अभी स्वास्थ्य की बात करी, तो जो हमारे जो किसान भाई हैं, विशेष तौर से जो संकर पशु पालते हैं, वो एक खुरपका मुंहपका बीमारी से काफी हद तक परेशान रहते हैं। उससे क्या है, पशुओं में मृत्यु दर तो कम है पर पशुओं का दूध का उत्पादन काफी घट जाता है।
1: अच्छा।
0: तो भारत सरकार द्वारा बड़े स्तर पे पूरे देश में ये योजना चलाई गई है कि टीकाकरण पूरे देश में किया जा रहा है। मतलब हमारे को FMD को देश से भगाना है, पूरा क्षेत्र वो रोग मुक्त करना है। तो FMD का टीकाकरण बड़े स्तर पे चलाया जा रहा है और दूसरे भी, चाहे वो हमारी गलगोटू बीमारी हो या और भी कोई बीमारी हो, उसके पशु चिकित्सालयों द्वारा टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि हमें रोग मुक्त क्षेत्र, मतलब हमारे जैसे पोलियो उन्मूलन हुआ है देश में, उसी प्रकार से जो हमारे पशुओं की जो मुख्य बीमारी है, चाहे वो गलगटू हो, चाहे वो लंगड़ा बुखार हो, चाहे मुंहपका खुरपका हो, इन बीमारियों को हमारे देश से उन्मूलन करना, पूरी तरह से खत्म करना है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो पशु हैं या उनके जो उत्पाद हैं उनको हम निर्यात भी कर पाएंगे। ये जो बीमारी है वो हमारे निर्यात में बड़ी बाधा है और आज आप हमारे जो नागरिक है उनको भी हमें उच्च गुणवत्ता का दूध एवं उसके उत्पाद उपलब्ध कराने।
1: बहुत बड़ा बात आपने बताया डॉक्टर साहब या, और अब आप यह बताओ कि पशु आहार का क्षेत्र में का नया अनुसंधान हो रहा है जिससे लागत भी कम आओ और उत्पादन भी अधिक दे सके।
0: देखिए, अभी भारत सरकार द्वारा सभी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग के माध्यम से 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहा है
1: जी।
0: उसका उद्देश्य ये है कि भाई जो हम जो DAP यूरिया या जो रासायनिक खाद उपयोग करते हैं उसका कम उपयोग करें और संतुलित उपयोग करें
1: जी।
0: उसी कड़े में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसा आपने उठाया पशु आहार की बात में, पशुओं के पोषण की बात करें
1: जी।
0: तो एक तरफ तो हम लोग जो हमारी जो खेती बाड़ी है उसमें रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा दाना नहीं खिला रहे। उससे क्या है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो हमारी देसी गायें हैं वो 15 से 20 लीटर दूध एक दिन में पैदा कर सकती हैं,
1: बिल्कुल,
0: परंतु कर 4 से 5 लीटर ही रही हैं। उसकी दो वजह है। पहली वजह है कि हमारे पास उच्च नस्ल के बहुत कम पशु उपलब्ध है
1: जी।
0: दूसरी बार जो पशु हमारे पास उपलब्ध हैं उनको जो वो पोषण है वो हम संतुलित और पूरी मात्रा में पोषण हम लोग नहीं दे रहे, उससे जो उनकी दूध उत्पादन क्षमता है, जैसे कोई गाय है उसकी 8 लीटर दूध देने की क्षमता है प्रतिदिन, कुछ है 10 लीटर वाली है, कुछ 12 लीटर वाली है, पर वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन नहीं कर रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पशुपालक भाई उनको लिए पर्याप्त पोषण, पर्याप्त आहार नहीं दे रहे, जबकि एक में तो पानी की नदियां बह रही हैं, तो जहां पानी की नदी बहती है वहां तो दूध की नदी बहनी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि हमारे यहाँ सूखे चारे की कोई कमी नहीं है और हरे चारे के लिए पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और अभी पिछले दिनों का किसान भाइयों को दिक्कत रहती थी कि साहब ये जो हमारा गर्मियों का मौसम है उसमें दूसरे पशु भी रहते हैं तो हरा चारा हम लोग पैदा नहीं कर पाते, तो सरकार ने अभी तारबंदी की स्कीम भी लागू कर रखी है कृषि विभाग ने, कि किसान भाई जो भी पशुपालन का कार्य करते हैं, अपनी डेयरी रखते हैं, वो कुछ क्षेत्र में सरकारी योजना का लाभ उठा करके तारबंदी करें और उसमें हरा चारा जो अभी गर्मियों में विशेष तौर से कमी रहती है, हरा चारा लोग उगाएं, तो उससे क्या होगा, हरे चारे में नेपियर लगा सकते हैं, ज्वार लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, तो हरा चारा हम हमारे पशुओं को खिलाएंगे, कुछ मात्रा में दाना हम लोग खिलाएंगे और उनको थोड़ा नमक खिलाएंगे, और हर जगह संतुलन की बात चल रही है तो थोड़ा खनिज लवण खिलाएंगे, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो पर्याप्त मात्रा में शुद्ध और ठंडा पानी पिलाएंगे। तो थोड़े से प्रयास से ही जिन भी किसान भाइयों के पास जो अभी वर्तमान में पशु हैं उनका उत्पादन 1.5 से 2 गुना उन्हीं से किया जा सकता है।
1: और अब आप ये बताओ कि अपना पशुओं में जब रोग बीमारी हो जाओ तो कभी कभी उसका अपने गणा ना पतो ही न पड़ा बीमार छे, तो पशुओं का रोगांगता है आप तुरंत पहचान लेने के लिए कहने अनुसंधान करा जा रहा है।
0: बहुत बात सही कह रहे हैं, जैसे उसके लिए क्या है, सबसे पहली बात है कि पशु के लक्षण देख करके जो हमारे पशुपालक भाई हैं उसकी पहचान कर सकते हैं, जैसे पशु जुगाली कर रहा है नहीं कर रहा है, पशु सुस्त तो नहीं है, पशु के बुखार तो नहीं है, ये सामान्य लक्षण है, नाक से आंख से पानी आना, बुखार होना, पशु का खाना नहीं खाना, जुगाली नहीं करना, इनको देख करके ही हमारे पशुपालक भाई पशु की बीमारी का एक मोटा मोटा अंदाज कर सकते हैं। उसके बाद में पशुपालक भाइयों के सामने जो एक बड़ी समस्या ये थी कि साहब हमें पशु चिकित्सा चिकित्सालय तक पशुओं को ले जाने में दिक्कत होती है, तो सरकार ने अभी मोबाइल वैन चला रखी है
1: जी जी।
0: कि आप उस पे आप सूचना देंगे तो पशु चिकित्सकों की टीम आपके घर पे ही पहुंचेगी। जो हमारे जो पशु चिकित्सक हैं वो पशुपालन

0: लोगों के द्वार पहुंच रहे हैं। सरकार की ऐसी योजना है और बहुत सारे पशुपालक भाई उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो मेरा आकाशवाणी के माध्यम से आज पुनः निवेदन है कि पशुपालक भाई इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने पशुओं को अच्छा उत्पादन लें, अच्छे उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी का उत्पादन लें, पशुओं को स्वस्थ रखें, क्योंकि भी हम लोग विश्व में सबसे बड़े दूध उत्पादक है, मतलब विश्व में नंबर वन दूध उत्पादक है। और जो हमारे को प्रतिदिन जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 250 से 300 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन पीना चाहिए, जबकि देश में 400 से 500 मिलीग्राम दूध का उत्पादन हो रहा है। तो दूध की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारे पशुपालक भाई हैं, उनके लिए बाजार की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी जो जितने भी हमारे देश के उपभोक्ता हैं, वो दूध को दूध ही नहीं, दूध के दूसरे रूप हैं, जैसे पनीर है, आइसक्रीम है, घी है, मिठाइयां हैं, छेना है, इसके रूप में भी इसका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब प्रोसेसिंग का कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी उसके भी बड़ी बात यह है कि सरकार की बहुत सारी सहकारी समितियां ऐसी हैं जो किसान के घर से उसके द्वार से दूध का कलेक्शन उचित मूल्य पे कर रही हैं। सिर्फ ये है कि हमारे किसान भाई डेयरी को एक उद्यम के रूप में, एक रोजगार के रूप में अपनाएं, जिससे उनको घर बैठे जो हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको रोजगार के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो डेयरी में टेक्नोलॉजी या पशुपालन प्रौद्योगिकी बहुत है।
1: और अब आप या बताओ जलवायु परिवर्तन को असर आपना मन क्या पड़ रो आपनी फसलों पर पड़ रो छ, तो आपना जो जानवर छ, आपना जो पशु छ, वो इस कशा निपटा और प्रयास करे जा रहा है, वहाँ पर क्या असर पड़ रो छी तरह से सुधार हो सके।
0: देखिए, हम लोग सब महसूस कर रहे हैं कि मई के महीने में बहुत दिनों तक हमारा जो तापक्रम वो 40 डिग्री से ऊपर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 डिग्री से ऊपर जब भी तापक्रम जाता है तो हमारे चाहे एयर कूलर हो, चाहे एसी हो, पंखे सब काम करने बंद कर दिए।
1: हाँ।
0: तो मनुष्य तो जो पंखे वाला है उसको कूलर पे आया, कूलर वाला एसी पे आया।
1: बिल्कुल।
0: परंतु दूसरी दिशा में हमें पशुओं के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो मेरा आकाशवाणी के माध्यम से निवेदन है कि पशुपालक भाई जैसे अपने लिए वातानुकूलित या हवादार या जो हमारी सर्दी गर्मी से बचाने के लिए आवास बना रहे हैं, उसी प्रकार से थोड़े सस्ते आवास हमारे पशुओं के लिए भी बनाएं, जिसमें जो हवादार हो और हमारे पशुओं को सर्दी गर्मी बरसात से बचा सके। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पशुओं के बाड़े में, किसान के घर में पेड़ होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा।
0: यदि आप अपने पशु के बाड़े में पेड़ लगाते हैं तो ये जो आज जो गर्मी जो हम महसूस कर रहे हैं उस गर्मी से काफी हद तक हम लोग बचाव कर सकते हैं। जो भी हमारे किसान भाई जैसे गाँव में सस्ते पशु आवास बनाते हैं, टीन शेड के बनाते हैं, छप्पर के बनाते हैं, परंतु वो टीन शेड के ऊपर जो हमारे छप्पर है उनके बगल में यदि पेड़ लगा होगा, उसकी छाया वहां रहेगी, तो हमारे पशुओं का दूध उत्पादन का अपना भी बढ़ जाएगा। और जो किसान भाइयों के लिए यदि संभव हो तो वो अपने छप्पर, टीन शेड या पशु आवास में पंखे की व्यवस्था कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और पशुओं को हर समय स्वच्छ जल मिलते रहना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे जो पशुपालक भाई हमारे पशुओं की नस्ल पे ध्यान दे रहे हैं, उनके खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, उनके आहार पे ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा पशु के आवास पे भी ध्यान दें। और गर्मी में हम देखते हैं बहुत सारे किसान भाई अपने पशुओं को जंगल में छोड़ देते हैं, तो 40 डिग्री के टेम्परेचर पे जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं है। जो आहार आपने पशु को खिलाया है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो पशुपालक भाई, पशुपालन एक बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी बात एक और है, अभी जो नए जो आ रहा है आजकल हमारे किसान भाई कि जो हमारे पशु है ऊर्जा के भी बहुत बड़े स्रोत है। आप गोबर गैस प्लांट आप लगाइए, उससे आपके जो गैस है उसका रसोई में उपयोग कीजिए और जो उसकी सलरी है उसका खेती में उपयोग कीजिए। आप देखिए पूरे देश में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का पूरे देश में अभियान चल रहा है कि हमारे किसान भाई कुछ क्षेत्र प्राकृतिक खेती या जैविक खेती में परिवर्तित करें। तो हमारे जो भी पशुपालक भाई हैं और जो हमारे पशुओं के गोबर है उसका उपयोग प्राकृतिक खेती में करेंगे तो हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको अच्छा भोजन मिलेगा और किसान की आय में बढ़ोतरी होगी।
1: और आबा वाला वर्षा में पशुपालन का क्षेत्र में आप कहीं कहीं संभावना और नवाचार देखो जो नवाचार।
0: हमारा देश आजादी के बाद से ही लगातार दूध उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। 5-6% की दर से प्रतिवर्ष दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, परंतु उसके बाद साथ साथ भारत एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ जनसंख्या है तो उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और जैसा कि लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है तो लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव डेयरी पे भी पड़ेगा, मतलब दूध और उसके उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ेगी। तो आना वाला जो भविष्य है हमारे पशुपालन का या डेयरी का बहुत ही उज्ज्वल भविष्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी पशुपालक भाई या जो हमारे

0: ग्रामीण महिलाएं हैं जो बहनें हैं वो यदि दूध उत्पादन करना चाहती हैं, डेयरी का कार्य करना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है चारा दाना हमारे गांव में घर में उपलब्ध है। दूसरी बात जो हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं वो घर में उपलब्ध है, उसके साथ थोड़ी पूंजी की जरूरत हमारे किसान भाइयों को पड़ती है, तो बैंकों द्वारा रियायती दर पे लोन दिया जा रहा है। और विशेष तौर से जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है वो बहुत ही सस्ती दर पे हमारे किसान भाइयों को लोन उपलब्ध करा रहा है। उसके साथ साथ भारत सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया है, तो जो पूंजी की आवश्यकता है वो बैंकों के द्वारा पूरी की जा रही है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, हमारा पशुपालन विभाग पूरा इसमें लगा हुआ है। जहां तक हमारे महिलाओं में, युवाओं में कौशल विकास करना, जिसे वो उद्यमी बने, इसके लिए हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। हर कृषि विज्ञान केंद्र पे डेयरी के ऊपर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, और जो डेयरी के लिए आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और डेयरी के उत्पाद के लिए भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो किसान भाइयों यदि कंधे से कंधा मिलकर सरकार के साथ चलेंगे तो हम डेयरी उद्योग को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते।
1: तो डॉक्टर साहब आज आप कार्यक्रम में पधारिया, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मैं बन भाई के ताई दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
1: बन भाया हो डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कितनी अच्छी जानकारी अपन के ताई दी च, और अपन के ताई यहाँ बातों पर अमल करनी चाहिए, ताकि अपन कहे पहली मछली पालन की बात कर रहे चा, मछली पालन पशु पालन ये सब अपने खेती का लगवाड़ा धंधा च, जिमे खेती बाड़ी भी प्रभावित न हो, उमा भी इसे फायदा हो च, और साथ ही साथ अपन के ताई आर्थिक रूप से भी फायदा हो च, तो अपन के ताई ये धंधा जरूर अपनानी चाहिए। बन भाया फायदा की बात कर रहे चाह, तो किसाना का फायदा कर लेके तो आपने सरकार भी घनी नई नई योजना चला रही च, वहां में से एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में किसाना के ताई वहां की खेती बाड़ी के ताई बेहतर बनावा के लेकर सिंचाई सुविधा अच्छी दर वहां के ताई उपलब्ध हो के लेकर शुरू की गई थी। इनको मुख्य उद्देश्य है खेत के ताई पानी पहुंचावो, पानी को कुशल उपयोग बढ़ावो, सूक्ष्म सिंचाई जैसे अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर का तय बढ़ावो देवो, कृषि उत्पादन और किसाना की आय में बढ़ोतरी करबो छ, और इस लाभ है जगह सिंचाई सुविधाओं को विस्तार हो, जल संरक्षण और जल संचयन का तय बढ़ावो मिलियो, कम पानी में अधिक उत्पादन हो वो की संभावना रच, और सूखा प्रभावित क्षेत्र में खेती में सहायता मिलच। ये योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लेकर योजना के अंतर्गत अनुदान दियो जाओ छ, साथ ही जल स्रोतों को विकास और खेतों तक पानी पहुंचावा कर लेकर विभिन्न परियोजना चलाई जाओ छ। ये को नारो छ हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक फसल। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सका जा। और बन भयाओ खेती बाड़ी की अच्छी संभावना के साथ साथ आपनो जीवन भी स्वस्थ बढ़िया रहते उनके लेकर भी आपने तय प्रयास करनी चाहिए जी, और खास तौर से अपना बड़ा बूढ़ा जो चे ना देखो उम्र बढ़े चे ना आपने को साथ साथ शरीर में भी बदलाव आओ चे, जोड़ा में दर्द, कमर दर्द, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, अनिद्रा, तनाव जैसी कई बीमारियां आपने तय लाग जाओ चे। ऐसे हमें योग एक सरल सुरक्षित और प्रभावी उपाय चे जो बुजुर्गों के तय शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखबा में मदद करे चे। योग करवा से शरीर में लचीलापन बनो रह, मांसपेशियां मजबूत हो च और संतुलन बेहतर हो च। नियमित योग और प्राणायाम से श्वसन क्षमता बढ़ च और हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो च। इनको मानसिक स्वास्थ्य पर भी चोको असर पड़ च। ध्यान और प्राणायाम से तनाव, चिंता और अकेलापन की भावना के तय कम करवा में सहायता मिल च। बड़ा बुढ़ा अपनी क्षमता के अनुसार सरल योगासन जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, ब्रजासन तथा प्राणायाम जैसे कि भ्रामरी, अनुलोम विलोम को अभ्यास कर सके च। पर हाँ या बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे आपने गर्भवती बने हो, कोई भी हो, सभी के ताई योग शुरू करवा से पहले चिकित्सक या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ से सलाह लेबो जरूरी है। बन भया हो जब भी आपने योग करा ताकि आपन के ताई कोई नुकसान न हो। और बात चिता घनी होगी और मारो तो मन कर रहे अब छोको सो गए गीत सुनबा को लेकर आपको भी कर रहे ना, तो आओ चला गीत संगीत की दुनिया में सुना आपने एक बढ़िया सो गयो लोकगीत।

कतनो बढ़िया गीत चो बन भाया और कत्ता बढ़िया गीत का भाव चा और बिल्कुल आपको तय भी पसंद आयो होगो क्योंकि गीत संगीत तो ऊंचा कर होता मन की हंसा दे और आपन के तय घनी सारी असी याद आना चाह आपने जो गीत संगीत सुनकर ताजा हो जाओ चा और आपन पतो न कसी कसी यादा में चल जाओ जा अरे यादा से बारह खड़ा जा गीत संगीत में से और आपन हकीकत में आकर के देखा जाएगा मंडियों में भाव कहीं चल रहे थे फसलों का क्योंकि फसलों में बेचर आपन के तय आपना और काम धंधा भी तो करना चाह गेहूं को भाव आज कोटा मंडी में रहो 2275 रुपया से लेकर के 2639 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन बकी आज 6301 रुपया से लेकर के 6846 रुपया प्रति क्विंटल धान को भाव कोटा मंडी में आज से बन भाया 3676 रुपया से लेकर के 4481 रुपया और धनियो बक्यो आज 10800 रुपया से लेकर के 14711 रुपया प्रति क्विंटल मेथी बग्गी कोटा मंडी में आज 5000 रुपया से लेकर के 6350 रुपया तय और चना बक्याच 4301 रुपया से लेकर के 5611 रुपया प्रति क्विंटल तय तली बकी 9900 रुपया से लेकर के 10050 रुपया तय और मूंग को भाव जो आज कोटा मंडी में 4500 रुपया से लेकर के 8325 रुपया प्रति क्विंटल और कोटा मंडी में ही मक्का बकी आज 1725 रुपया से लेकर के 2021 रुपया प्रति क्विंटल।

आपको टाइम बता दिया काल का कार्यक्रम का 12 मा तो काल बुधवार दिनांक 10 जून 2026 के दिन शाम के 7 बजे 7:30 बजे तय सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय रखो खरीफ फसला का कीट रोग से कैसे बचावा। विशेषज्ञ होगा डॉक्टर नाथूलाल मीणा डीन कृषि महाविद्यालय हिंडोली बूंदी। आप सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बातचीत कर सको चो मगा टेलीफोन नंबर 0744 जो कि कोटा का एसटीडी कोड च और नंबर हो जाने पहचाने 2-941-142। तो खाल शाम के 7 बजे 7:30 बजे तक सुनबो मत भूल जो कार्यक्रम चौपाल। अरब कार्यक्रम में कते टेम को ना आज तो दो इजाजत चालाचा राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर देश और दुनिया में हर जगह। अब हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत।

तो यार छबा श्रोताओ छोड़िया घनी फैशन में लागी छोड़िया सुन लो अतरी शिकायत तो लागी था की तो अबार थाने सुनी रामकिशन वर्मा की आवाज में छोड़िया फैशन में आगी और अब सुना चाहिए गीत प्रहलाद राव की आवाज में।

बूंदी की तीजा को मेड़ो वैसे मेड़ो माँ को भी घणो सरास आओ जो वैसे घूमो तो घूमता ही जाओ बूंदी की तीज का मेला में तो मजो आ जाओ जो आनंद तो भाई रात में ही शुरू हो जाए बूंदी की तीजा में। और ऐसी बात को है ना भाई गांव का मनो को चाहे शहर का हो तीज को नाम सुनता है तो भाई पर और मन दोनों बस नाच बलाग जाओ जो आओ सुना चा अगलो गीत अपन मनमोहक आवाज में मोडूलाल गहलोत और पार्टी में सुना चाहिए स्वर और आओ सुना यो गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और आइए अब जान लेते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार कोटा में बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 7 बजे से 7:30 तक आप सुनेंगे हमारे अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर आर एस गोगावत के साथ भेंटवार्ता। विषय है योगाभ्यास के लाभ। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट की है राजेश महावर ने, तो अवश्य सुनिएगा प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम नमस्कार कोटा। और इसी के साथ एक और आवश्यक सूचना आप तक पहुंचाएं, चंबल चैनल से रात्रि 11:10 पर सुनना न भूलिए हमारा दिल्ली केंद्र से आज का विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी सूचना यहीं पर समाप्त होती है। तो पाछी चालाचा श्रोताओं, अपना कार्यक्रम लोक संगीत में, लोक संगीत में अपथाना सुनाऊंगा शिव कुमारी गौर का आवाज में बहुत ही बेहतरीन सोयो लोक गीत, जो माँ की भी पहली पसंद जर बूंदी का तीज की बात हुई जर, तो पाछी बूंदी चालंगा और बूंदी को दरवाजा को यो गीत सुनूंगा।

तो सुनली श्रोताओं था न दराणी की चतराई जेठानी जी का सामना जो बेवड़ो बोल चर उठा लाओ छ। तो ई गीत का साथ ही लोक संगीत को कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो छ। ये आकाशवाणी कोटा।

0: अब बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है और लीजिए अब सुनिए
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रहे फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को आधुनिक, सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत की शुरुआत कर रहे हैं हम एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ, जो यकीनन आपका भी काफी पसंदीदा गीत है, और इसे हमने लिया है फिल्म आशिकी से।

और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मृत्युदाता से ये खूबसूरत गीत विनोद राठौर, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज के सम्मिलित स्वर में। इस गीत को लिखा है समीर ने और सरगम है।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत सा ये नगमा फिल्म एक रिश्ता से। अलका याग्निक, सोनू और मोहम्मद अजीज सारिका कपूर की आवाजों में

आइए सुने अनु मलिक की धुन पर रचा बसा ये गीत फिल्म ओम जे जगदीश से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की और शब्द रचना समीर की।

साधना सरगम और उदित नारायण की मखमली आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं बेहद ही रूमानी गीत। फिल्म है प्यार इश्क और मोहब्बत, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत विजू शाह का।

पेश है चित्रपट संगीत में हमारा ये नगमा फिल्म कसूर से। आवाज है कुमार सानू की, संगीत नदीम श्रवण का, और इस गीत को लिखा है समीर ने।

जावेद अख्तर के बोल पर यह गीत अभी आपने सुना, जिसमें सरगम थी अनु मलिक की और फिल्म बधाई हो बधाई। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसे स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया।

0: सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूं।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 102.6 MHz पर मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 9 बज रहे हैं और अब हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर से, फिल्म स्वीकार किया मैंने। इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने और संगीत उषा खन्ना का।

आइए एक बार फिर से सुनते हैं लता मंगेशकर की मधुर आवाज। बोल हैं हसरत जयपुरी के और सरगम शंकर जयकिशन की और फिल्म एक दिल सौ अफसाने।

श्रोताओं, आप हैं इस वक्त आपके अपने आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी नेहा। आइए श्रोताओं, जान लेते हैं चौपाल कार्यक्रम संबंधी सूचना। प्रिय श्रोताओं, प्रत्येक बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को साय 7 बजे से 7:30 तक सजीव फोन इन

कार्यक्रम का विषय होगा, खरीफ फसलों को कीट रोगों से कैसे बचाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नाथूलाल मीणा, कृषि विश्वविद्यालय हिंडोली बूंदी। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, जो कि हैं डीन डॉक्टर नाथूलाल मीणा, कृषि विश्वविद्यालय हिंडोली बूंदी। हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे 0744-2941-142 पर। प्रसारण समय रहेगा बुधवार साय 7 बजे से 7:30 तक। ये सूचना यहीं पर समाप्त होती है। श्रोताओं, आप जुड़ रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, तो एक और हमारा विशेष कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से जरूर से सुनिए रात्रि 11:10 पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना यहीं पर समाप्त होती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। भूले बिसरे गीत पुराने, दिलों के कई अनकहे अफसाने जो इन्होंने साथ में पिरोए हैं। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का ये प्रसारण फिल्म संगीत का, जहां बहुत ही भूले बिसरे गीत जो कि पुराने हैं पर आपके दिलों के बेहद करीब हैं। और ऐसा ही एक मनमोहक गीत जो आपके दिलों में रचा बसा है और बेहद ही सुकून भरा है, आइए सुनते हैं आशा भोसले व किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दीवार से ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं साहिर लुधियानवी की कलम से सजा एक बेहद खूबसूरत गीत हेमंत कुमार की आवाज में।

आइए श्रोताओं सुने येसुदास और हेमलता के युगल स्वर को फिल्म चित्तौड़ से, संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे के सुरमई स्वर में ये गीत फिल्म सती सावित्री से है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शगुन से ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, संगीत खय्याम का और बोल हैं साहिर के।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, हर सफर में आपके साथ। और इस वक्त जारी है आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आप तक फिल्म संगीत का अगला नगमा पहुंचाएं, उससे पहले जान लेते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार कोटा में बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 7 बजे से 7:30 तक आप सुनेंगे हमारे अतिथि विशेषज्ञ डॉ आर एस गोगावत के साथ भेंटवार्ता, विषय योगाभ्यास के लाभ। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट की है राजेश महावर ने, तो अवश्य सुनिएगा प्रातः 7 बजे से कार्यक्रम नमस्कार कोटा। और इसी के साथ कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त। आइए श्रोताओं, अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत में हमारा अगला नगमा लता मंगेशकर के स्वर में।

चले जाना नहीं नैन मिला के सैया बेदर्दी। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बड़ी बहन से, स्वर है लता मंगेशकर के। अब आपको सुनवा रहे हैं दिल पुकारे। जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में अब आप ये गीत सुनेंगे फिल्म ज्वेल थीफ से। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत SD बर्मन का।

श्रोताओं एक बार फिर से सुनेंगे लता मंगेशकर की मधुर आवाज और फिल्म है पूजा के फूल। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत मदन मोहन का।

दिलों के कई अनकहे मधुर अफसाने, भूले बिसरे ये गीत पुराने, जिनमें पिरोए गए हैं बहुत ही दिली बातें और दिली अफसाने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अब एक बेहद ही मधुर और बेहद ही लोकप्रिय आवाज जो कि है मोहम्मद रफी की, अब आप सुनेंगे

ओपी नैयर की तर्ज पर ये बेहद ही रूमानी और बेहद ही खूबसूरत गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सावन की घटा से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कोहरा से लता मंगेशकर के स्वर में एक और खूबसूरत नगमा।

बेकरार दिलों को करार देते हैं ये गीत और दिन भर की थकान को भुला देते हैं ये गीत। फिल्म संगीत का ये सफर इसी गीत के साथ यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता अभी आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनिएगा मुंबई से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रात आती है तो साथ लाती है ख्वाबों का जहां।

साथ लाती है ढेर सारी यादें। यादों में एक अनोखी दुनिया होती है, जिंदगी की पुरानी तस्वीरें होती हैं यादों में। यादों की चौखट पर बैठ हम बतियाते हैं रात से।

एक रात मुराद पूरी होने की रात, एक मुराद चांद पर पहुंचने की, एक मुराद चांद को देखने की। चांद और रात ये एक दूसरे के हमसफर हैं। एक रात यादों की रात, यादों में मोहब्बत के चिराग जलाए, गम के मध्यम आंच पर जज्बात पिघले, ख्यालों में उनका मुस्कुराना और फिर उदास हो जाना, यादों में सितारों को हथेली पर रोपना और मुस्कुरा देना। इन दिनों दिल इन्हीं में रहता है मसरूफ।

गम का साया दिल के किसी कोने में पुराने सामान की तरह रखा था, पर उन्होंने एहसास दिलाया कि जिंदगी गमों के टूटे फूटे टुकड़ों से भी सजी होती है। गम के एहसास के बाद खुशी दोगुनी हो जाती है। एकाकीपन के साये में होता है साथ का एहसास। उन्होंने याद दिलाया, जिंदगी मोहब्बत से सजती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये दिल को क्या हुआ, अपने काबू में न रहा, औचक दिल में बातों का सागर भर गया, औचक आंखें खोई खोई सी रहने लगी, बिना बात होठों पर मुस्कुराहट तिरने लगी, आंखें बिना काजल कजरारी लगने लगी। ये शायद किसी के आने की चाप है जिसने दिल का मौसम बदल दिया।

वक्त के धारे मोड़ दिए उन्होंने, उगते सूरज की लाली ने चेहरे को रंगीन बना दिया और दिल को हसीन। भली सी सूरत, भला सा नाम, दिल की धड़कन बन गए, निगाहों से वे दिल में समा गए। उनके हुस्न का जादू आंखों में तिराया, उन्होंने दिल से करार किया और मासूम दिल उनकी मोहब्बत के गिरफ्त में आ गए।

उनके आने से पौधों में अंकुर फूटे, खिले कलियां मुस्कुरा उठी, फूलों में ताजगी आ गई, बारिश की बूंदों से सज उठी धरती। उनके आने से आसमान में जैसे किसी ने नीला रंग छिड़क दिया हो। खुशनसीब दिल को एहसास हुआ कि उसे प्यार हो गया है। सारी कायनात जब खूबसूरत लगने लगे तो समझो कि उसे प्यार है किसी से।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे

0: सच है क्या जिंदगी।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और

0: तथा शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने

0: का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को, बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है, कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा,
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उनपे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया, कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग PPP कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है PPP को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली PPP मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया।

0: और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ, तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, जो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। Last year we started exporting railway propulsion technology to Germany, France,

0: स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं, तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं, तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पे ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पे रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पे अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे, और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सके आप? तो
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर, तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल, और टेलीकॉम में AI का रोल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट

0: की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है, आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे, उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है, नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम

0: भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है, इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन, देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे, तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो, लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है। हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से मिल रहे हैं।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमें आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रही है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम

के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको

0: बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11:45 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।